0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ये किसी दुनिया के किसी कोने में कोई तो सेइंग है, लेकिन ये मेरे हर एक्स बॉयफ्रेंड को अप्लाई करती है. एंड इफ़ यू आर माय एक्स बॉयफ्रेंड एंड यू आर लिसनिंग टू दिस, प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन ये सच है. और ये कहावत है कि व्हेन अ डोंकी गेट्स टू मच अटेंशन, इट स्टार्ट्स थिंकिंग इट्स अ लायन. अर्थात अगर एक श्रीमान गधे को आपने ज़रूरत से ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखा दिया, तो श्रीमान गधे को भी लगेगा कि शायद वह ही राजकुमार है. हमारी हिंदी देख रहे हैं, वह ही. लेकिन ये सब राजकुमारों को डेट करते करते ना मैंने रियलाइज़ कर लिया कि शायद मुझे ही डड्डू पसंद है, क्योंकि मैं डड्डू आफ्टर डड्डू आफ्टर डड्डू ही लेकर आती हूँ. कोई मतलब डिफ्रेंसिएशन ही नहीं है. ऐसा भी नहीं कि डड्डू से शायद मैं हाथी तक पहुँच जाऊँ या हिप्पोपोटामस तक पहुँच जाऊँ. नहीं, जब से होश संभाला है डेटिंग का, डड्डुओं को ही डेट किया है. अगर मेरी तरह आपके भी जीवन में यही तो प्रॉब्लम है, यही तो फंस रहे हैं आप, तभी तो आपका ब्याह नहीं हो रहा. डड्डू से कैसे ब्याह करेंगे? व्हाई डोंट यू हिट मी अप? दोनों अपने दुख तकलीफें एक दूसरे के साथ बांटेंगे, शायद हमें बेटर फील होगा. क्यों नहीं मसी जी? सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHI.

0: Milchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana. La bala. Burga, burga. La virpa, la burga.
2: Milchi, burga.
3: Hello.
4: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
3: क्या हो गया
4: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
3: क्या हुआ, क्या है
4: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
3: कब दिया था आपने?
4: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
3: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
4: चंद्र फोन लेके आ,
3: डिस्प्ले आ रहा है।
4: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
3: फोन आ रहे हैं और ओके।
4: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
3: बेल बज रही है।
4: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
3: अरे आपने लिया कहाँ से था
4: ये गुब्बारे?

0: परेशानी। जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें। वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी, टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटोमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरु देव।
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।

only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
1: Plus, grooms के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Islin.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
5: अब मिर्ची खा।
7: Radio Mirchi. It's hot.

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi New Jersey. It's hot.
1: क्या आप मेरी बेस्टी की तरह उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिन्हें लगता है कि पहले दो तीन ब्रेकअप्स इन द सेम रिलेशनशिप ये तो एक निशानी है दैट योर रिलेशनशिप इज गोइंग वेल, क्योंकि एक रिलेशनशिप में जब तक पांच छह स्पीड ब्रेकर्स नहीं आएंगे वो असली रिलेशनशिप है भी या नहीं. एंड बाय द टाइम यू आर डीलिंग विद योर आठवां ब्रेकअप इन द सेम रिलेशनशिप, आपको उसके रेड फ्लैग्स इतने क्यूट लगने लगते हैं दैट आप सपने देखते लगते हो उसके रेड फ्लैग्स का लहंगा बनाकर उसी की दुल्हन बन के कितने क्यूट लगोगे आप. अगर बिल्कुल मेरी बेस्टी की तरह आप में भी यही प्रॉब्लम्स हैं, व्हाई डोंट यू सेंड मी योर नंबर इंस्टा पर या एफवी पर. लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड फिगर आउट कितने सुंदर लगोगे आप उस रेड फ्लैग के लहंगे में. एंड टू डू दैट यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Escava la puscava la sacava la.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Mirchi.
4: It's Navid.
3: बोल रहा हूँ।
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
3: वो आपको मुझे बताना होगा।
4: तो मैं अभी बता दूँ?
3: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
4: संजना।
3: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का।
3: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
3: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं।
3: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूं।
3: ओके चलिए।
5: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
5: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
3: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
4: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
3: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कहते एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस्य बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

लटक नटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

बावला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

मैं बहुत सोचने के बाद इस डिसीजन पर पहुंच चुकी हूँ दैट आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू मेन. नहीं, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम ऑल्सो नॉट अट्रैक्टेड टू वीमेन इन दैट वे. आई थिंक बेसिकली मैं पैंडा से अट्रैक्टेड होती हूँ, यू नो दोज बिग क्लम्सी बेयर्स. और फिर क्योंकि मैं पैंडास को डेट नहीं कर सकती क्योंकि हम डिफरेंट स्पीशीज हैं, आई एंड अप डेटिंग मेन जो बिल्कुल पैंडास हैं ऑन दी इनसाइड. दे जस्ट इनहैबिट द बॉडी ऑफ मैन. आई टेल यू व्हाई. मैंने जिस भी बंदे को डेट किया ना, ए ही इज लेजी ए एफ, पैंडास का पहला साइन. दूसरा, दैट पर्सन इज क्लम्सी ए एफ. भाई मैंने जिस बंदे को डेट किया ना, इतना क्लम्सी होता है इवन इन बेड समटाइम्स, व्हिच इज अ टेरिबल थिंग. नंबर थ्री, इन लोगों को पता ही नहीं है कि जिंदगी में करना क्या है, बिल्कुल पैंडा की तरह. नंबर फोर, ऐसे चले जा रहे हैं जिंदगी में, चलते चलते गिर जाते हैं भाई, लाइक लिटरली लाइक दैट. All of these are the signs of every man I have ever dated. अब आप मुझे ये बताओ hindsight में कि आपको क्या लगता है, अगर आपका boyfriend या girlfriend कोई animal spirit होते तो क्या होते वो? क्योंकि panda is taken, वो तो मैंने आपको already बता ही दिया है. अब आपको थोड़ा सा inventive होना पड़ेगा. And once you find it out for yourself, hit me up on Facebook या Insta and we will talk about it because notes to compare करने पड़ेंगे bro. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के spelling है ROCHIE. So hit me up and whatever you do, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच में हु होल्ड्स द पावर इन द रिलेशनशिप, अगर आप ये जानना चाहते हो तो एक सिंपल सी चीज सोचो. विच ऑफ द टू ऑफ यू इज मोस्ट विलिंग टू वॉक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप. आप दोनों में से किसे कम डर लगता है इस रिलेशनशिप को खोने में. जो भी इंसान इज ओके लूजिंग द रिलेशनशिप, वो इंसान होल्ड्स ऑल द पावर इन द रिलेशनशिप. और मेरे हिसाब से आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन या रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए दैट कॉस्ट्स यू योर पीस. ये मैंने इतनी मुश्किल से सीखा है. एक मेगा अब्यूसिव रिलेशनशिप में 3 साल और 13 लाख रुपए हारने के बाद. जी हाँ, और अगर आप मेरे 13 लाख रुपए की स्टोरी सुनकर बहुत ही मायूस फील कर रहे हैं बिकॉज यू आर क्वाइट क्लोज टू द सेम फिगर इन योर रिलेशनशिप, व्हाई डोंट यू हिट मी अप. खूब रमेगा जंग, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे अब्यूजीज दो. तो आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और अगर आपके पास खुद रिलेशनशिप के कुछ बहुत ही अनोखे जेम्स हैं जो आपने जी जी कर सीखे हैं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप विद दोज एज वेल. आई वुड लव दैट. एंड ऑन दैट नोट, व्हाइल यू डू ऑल ऑफ दिस एंड फाइंड मी ऑन योर सोशल्स, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana. ¡Rápala! ¡Burga, burga! ¡La fiesta la burga!
2: ¡Mirchi, burga!
3: ¡Acá!
4: ¡Aló!
5: ¡Aló! सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या मत तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
4: क्या हो गया
5: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
4: क्या हुआ, क्या है
5: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
4: कब दिया था आपने?
5: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
4: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
5: चंद्र फोन लेके आ,
4: डिस्प्ले आ रहा है।
5: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
4: फोन आ रहे हैं और ओके।
5: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
4: बेल बज रही है।
5: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
4: अरे आपने लिया कहाँ से था?
5: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
4: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
5: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
4: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
5: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते,
4: थोड़ी ना
5: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
4: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
5: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
4: तो आप हमें फोन कर रहे हैं वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराई,
5: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
4: फोन थोड़ी ना होते
5: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
4: फोन मत करिए,
5: यहाँ फोन मत करिए यार।
6: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
4: हेलो
6: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
4: अरे सर, काम का टाइम है, आप फालतू
6: में। सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
4: कुकड़ू को।
6: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मीडियम फेमस पोएट्स की पोएम चुरा कर अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हो कि आपने खुद लिखा है, ऐसे गलत गलत गंदे गंदे काम करते हो, इसका कन्फेशन कहाँ करने वाले हो? हाँ, गोस्ट शो की सिर्फ यहाँ, क्योंकि टाइम हो गया है फॉर द सीक्रेट बॉक्स और मैं हूँ आपके साथ मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. जो भी है आपकी कन्फेशन, हिट मी अप एंड आई विल कॉल यू लाइक आई कॉल माय मिस्ट्री कॉलर. हेलो वाइब, आई एम एक्चुअली, मैं काफी सीधी साधी और डिसेंट टू कम्पेयर टू द काइंड ऑफ कन्फेशन जो आप अभी करने वाले हो, क्योंकि आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता चुके हो.
2: Exactly. यही बात सुन लो. क्या करे, करना है कुछ इंटरेस्टिंग काम, लेट्स से लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना. मैंने डेटिंग ऐप पे एक प्रोफाइल बना दिया एंड गेस व्हाट, मुझे बॉयफ्रेंड भी मिल गया. या
1: लेकिन ये तो कन्फेशन है नहीं आपकी.
2: एग्जैक्टली, बट हम लोग मिले और मिलने के बाद यू नो वी हैड नाइस डेट एंड ऑल दैट, और उस डेट के एंड में उसका कजन उसको पिकअप करने आया यार. एंड देन आई सॉ हिज कजन और मुझे ऐसे लगा कि ओ माय गॉड, आई डोंट वांट दिस गाय नाउ, मुझे तो वो चाहिए है. तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे वो लाइफ में चाहिए. मैंने उसका प्रोफाइल पूरा स्टॉप कर दिया है, उसका नंबर भी मैंने कॉन्टेक्ट से मंगवा लिया है. जस्ट गोना पिंग हिम सून.
1: आई कांट बिलीव दिस. तो आपका दिल आपके करंट बॉयफ्रेंड के कजन पर आ गया है, लेकिन आप एक करंट बॉयफ्रेंड का करने क्या वाले हो? कजन का नंबर तो ले लिया, लेकिन करंट बॉयफ्रेंड को कैसे बाय बाय बोलोगे?
2: देखो ऑनेस्टली बताऊं तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास दोनों पैसा हो नहीं सकता.
1: How saucy are you? वैसे आपको जरूरत नहीं है रोशिफिकेशन की, बट दे दूं वैसे, just on a lark.
2: Please,
1: ले लो यार.
2: इंसान हो तो गिर पड़ेगा.

0: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

इन अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्ल्ड, जैसे कि हम जिसे अभी इनहैबिट करते हैं, जहाँ पर जिप्स और मीम शेयरिंग इज अ प्रेडोमिनेंट लव लैंग्वेज, सोचो अगर मैं कुछ ऐसा सजेस्ट करूँ जो आपको इनिशियली शायद अटपटा लगे, बट थिंक अबाउट इट, हो सकता है यू माइट फॉल इन लव विद द आइडिया. एक पेन लो, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लो और एक छोटी सी लव लेटर लिख डालो. इट डजेंट हैव टू बी टू योर पार्टनर, इट कुड बी अपनी मम्मी के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी कजन के लिए हु इज स्ट्रगलिंग विद हर लाइफ एंड रोमांटिक लाइफ, या जो भी. एंड एक बार आप ये चिट्ठी लिख कर उस इंसान तक पहुंचाओगे, जब आप उस इंसान का रिएक्शन देखोगे ना, जहाँ पर दे विल रियलाइज कि आपने मेहनत से, अपने हाथ से, अपने दिल की इमोशंस को एक कागज के टुकड़े पर उतारा है, दैट रिएक्शन विल बी प्राइसलेस. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अक्सर मैं अपनी मम्मी के साथ ये करती हूँ, कभी कभी अपने भाई के साथ भी, और कभी कभी अपनी प्रोड्यूसर के साथ भी. और जितनी बार मैं ये लव लेटर्स लिखती हूँ, द रिएक्शन रिमेन्स द सेम, खुशी के आंसू.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambana.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Mirchi.
4: It's Navid.
3: बोल रहा हूँ।
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
3: वो आपको मुझे बताना होगा।
4: तो मैं अभी बता दूँ?
3: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
4: संजना।
3: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का।
3: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
3: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं।
3: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूं।
3: ओके चलिए।
5: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
5: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
3: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
4: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
3: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कहते एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करूं।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

नचाया है, हंसाया है, रुलाया है, डराया है, धमकाया है, हर तरह से एंटरटेन किया है इस बंदे ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और मैं बात कर रही हूँ द वंडर कॉल्ड मिथुन चक्रवर्ती की। और मुझे ना ऐसा लगता है मुझे छोटे होते इन पे ना ऐसा छोटा सा क्रश था, क्योंकि मैं इनकी सारी फिल्में देखती थी भाई, सारी फिल्में, चाहे वो टीवी पे आ रही है, चाहे वो VCR पे चल रही है, चाहे थिएटर, तो चलो उतना तब जाने को मिलता नहीं था, लेकिन आई वुड नॉट मिस मिथुन चक्रवर्ती फिल्म। फिर चाहे वो 80s की जो फिल्में थी ना उनकी, जिसमें वो ऐसे डायलॉग्स होते थे, साला तेरी आपड़ी की तोपड़ी, लोहा, इलाका, गुंडा, गुनाहों का देवता, प्यार का देवता, देन कट टू 90s फिल्म्स लाइक जल्लाद, यमराज, रावण राज, चीता, सारी फिल्में भाई। और उनकी पहली फिल्म मैंने पता है कौन सी देखी थी VCR पे, प्यार झुकता नहीं। उसमें वो जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग सा उनका किरदार होता है, वो जिस तरह से पद्मिनी कोल्हापुरी से उस फिल्म में प्यार करते हैं, बस तभी शायद वो छोटू सा प्यार हो गया था। हाँ, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिया यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं
1: दी। मैं कल को
0: फोटो खींचे,
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
4: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
6: Purani jeans. With Charu. Only on

जमीन पर पैर तो जम चुके थे पर आसमान की उड़ान अभी बाकी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ द फिनोमिनन कॉल्ड मिथुन चक्रवर्ती की। 1976 में मृग्या जैसी फिल्म में नेशनल अवार्ड जीत के मिथुन ने कुछ 50 फिल्में की होंगी और उसके बाद आया उनके करियर का पिनिकल, वो शिखर, वो ऊंचाई जिसके लिए वो बने थे, 1982 के इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर डिस्को डांसर। जिन लोगों ने उस टाइम इस फिल्म के सक्सेस को विटनेस किया है ना, वही बता सकते हैं कि वो क्या सेंसेशन, क्या रेवोल्यूशन था। ये पहली इंडियन फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए कमाए थे। क्या होते थे 1982 में 100 करोड़? क्या एशिया, क्या अफ्रीका, क्या यूरोप भी? डिस्को डांसर का जिमी यानी कि मिथुन चक्रवर्ती एक हाउसहोल्ड नेम बन गए थे, खास करके रशिया में। ही वाज सो पॉपुलर कि एक बार जब मिथुन रशिया गए तो वहां के प्राइम मिनिस्टर को एक रैली कैंसिल करनी पड़ गई क्योंकि सारी पब्लिक एयरपोर्ट पहुंच गई मिथुन को देखने के लिए। वो शाइनी डिस्को बॉल्स वाले स्टेज पे चमक धमक वाले कपड़े पहन के, सर पे बैंड लगा हुआ, हाथ में माइक, पब्लिक पागल हो गई थी जब डिस्को डांसर के जिमी ने ये पूछा था,

0: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस्य बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
7: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

अर्ली 80s में पूरा इंडिया डांस डांस हुआ पड़ा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी चीज पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्योंकि 1982 में मिथुन चक्रवर्ती की इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर डिस्को डांसर ने हाय तौबा मचा के रखी हुई थी। और इसके बाद ना मिथुन दा को थोक में फिल्मों के ऑफर आने लग गए और वो कर भी रहे थे। मैंने उनका एक पुराना इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने 1987 का इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे थे कि वो एक साथ कुछ 30-32 फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट मिथुन दा की फिल्मों का ना उस टाइम पे अपना ही एक अलग यूनिवर्स होता था। उसका बाकी फिल्मों से कोई लेना देना नहीं होता था बिकॉज ये फिल्में आपस में ही कॉम्पिटिशन करती रहती थी। 1989 में मिथुन दा की कुछ 19 फिल्में आई थी, डेढ़ फिल्म पर मंथ के हिसाब से लगा लो। एंड लेट मी टेल यू, सारी की सारी फिल्में हिट हो रही थी। एक फिल्म हिट हो रही है, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी, अलग ही इंसेप्शन चल रहा है। चलिए अभी बातों पे ब्रेक, अभी गाना सुनेंगे डिस्को डांसर मूवी का। टाइटल ट्रैक नहीं, वो तो हम सुन चुके हैं। अभी हम वो गाना सुनेंगे जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जब तक मैंने मूवी नहीं देखी थी ना, मुझे लगता था ये गाना वो अपने लवर के लिए गा रहा है। जब मूवी देखी तो पता चला ये गाना वो अपनी मदर के लिए गा रहा है। वो माँ जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसको याद कर रहा है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

मिथुन चक्रवर्ती ने, जी हमारे प्यारे मिथुन दा ने कुछ 350 फिल्मों में काम किया होगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनके अलग अलग रोल्स देख के ना, उनकी परफॉर्मेंस देख के ऐसा यकीन नहीं होता कि ये सेम बंदा है। अभी 4 बार इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। वो बहुत ही ऑफ बीट नॉन कमर्शियल टाइप की फिल्में हैं वो। फिर फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिले हैं बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। मतलब कितनी वैरायटी, क्या रेंज है बंदे की। 80s में वो किस तरह के थे फिल्मों में, 90s में वो किस तरह के हो गए, और इनके डायलॉग्स अलग ही तरह के आइकॉनिक रहे हैं। 80s में तो भरमार लगा हुआ है, यू नो वो वाले जो डायलॉग्स होते थे, ऐ साला तेरी अपड़ी की तोपड़ी, या तेरी जात का बैदा मारूं, या तेरे नाम का कुत्ता पालूं, या कानून और देवता जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। बट मेरा फेवरेट पता है कौन सा है? जिस फिल्म का ये डायलॉग है उसी फिल्म का एक गाना भी है जो आई एम 100% श्योर आपको पसंद है। मूवी का नाम है गुलामी, डायलॉग है कोई शक, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

आपको पता है एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी को हेमा मालिनी जी की मदर ने एक पार्टी में नोटिस किया था। मिर्ची सुन रहे आप पुराने जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, बिंदिया गोस्वामी जब एक टीनेजर थी तब एक पार्टी में हेमा मालिनी जी की मॉम ने उनको देखा और सोचा कि अरे ये तो बिल्कुल हेमा जैसी दिखती है। तब उन्होंने, हेमा मालिनी जी की मदर ने, बिंदिया गोस्वामी जी को प्रोड्यूसर्स को रेकमेंड करना शुरू किया। तो इनकी फर्स्ट फिल्म थी 1976 की जीवन ज्योति, विच वॉज अ फ्लॉप फिल्म, लेकिन धीरे धीरे उन्हें नोटिस किया जाने लगा। फिल्म्स लाइक खट्टा मीठा, गोलमाल, दादा, शान, एक्चुअली कितनी प्रिटी थी बिंदिया गोस्वामी, मतलब उनके बाल कितने सुंदर थे ना, लंबे लंबे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना। मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार। ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे।
3: क्या हो गया
4: सर, मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है। मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने।
3: क्या हुआ, क्या है
4: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
3: कब दिया था आपने?
4: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
3: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
4: चंद्रो फोन लेके आ,
3: डिस्प्ले आ रहा है।
4: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
3: फोन आ रहे हैं और ओके।
4: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
3: बेल बज रही है।
4: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है। मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
3: अरे आपने लिया कहाँ से था?
4: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
3: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप।
4: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
3: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
4: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
3: तो
4: नहीं होते।
3: थोड़ी ना
4: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
3: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
4: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
3: तो आप हमें फोन कर, हमें गुब्बारे वाले से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
4: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे।
3: फोन थोड़ी ना होते
4: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
3: फोन मत करिए
4: यहाँ, फोन मत करिए यार।
5: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
3: हेलो
5: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
3: अरे सर, काम का टाइम है,
5: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
3: कुकड़ू कु।
5: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ए पगला,
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

ये तो आपको पता है ना कि 1980 में बिंदिया गोस्वामी एंड विनोद मेहरा इन्होंने चुपके शादी की थी। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसकी मेन वजह ये थी कि विनोद मेहरा साहब का अपनी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स नहीं हुआ था। इस वजह से बहुत सारे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स थे जहाँ पे तीन परिवार जुड़े हुए थे, और इस सब की वजह से चार साल के बाद ही 1984 में ये दोनों अलग हो गए। इसी दौरान बिंदिया गोस्वामी जी जेपी दत्ता साहब से भी मिली और दोनों ने शादी कर ली। उस दौरान बिंदिया गोस्वामी जी ने अपना करियर भी छोड़ दिया था। वैसे काफी साल बाद जेपी दत्ता साहब की जो फिल्में थी, चाहे वो बॉर्डर हो, रेफ्यूजी हो, उसमें उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम किया था बिंदिया गोस्वामी जी ने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: बच्चा आज का आसन है यस बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो ऊपर नीचे। वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: हिंदी फिल्मों के मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर्स में से एक थे ओम प्रकाश जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप।
1: भाई इनका जन्म 1919 में कोई कहता है जम्मू में हुआ था, कोई कहता है लाहौर में हुआ था, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि इनके फादर के दोनों जगह पे घर थे। खैर बचपन से इनको संगीत, अभिनय, फिल्मों का शौक था।
0: इन्होंने संगीत भी सीखा और शहर में जो नाटक ये सब जो होता था उसमें ये पार्टिसिपेट भी करते थे।
1: और धीरे धीरे इनकी जीवन और करियर की गाड़ी नॉर्थ इंडिया से बॉम्बे पहुंची
0: और फिर इन्होंने अपना एक आइकॉनिक फिल्मी करियर बनाया। क्या क्या किरदार निभाए हैं ओम प्रकाश जी ने भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: भी ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो,

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only

0: किशोर कुमार के बारे में कहने के लिए कितना कुछ है भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सिर्फ हम लोगों के पास नहीं, पुराने एक्टर्स एक्ट्रेसेस से अगर आप सुने उनके पास भी बहुत कुछ है। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में माला सिन्हा जी ने किशोर दा के बारे में क्या कहा था।
1: सबसे ज्यादा कॉमेडियन और सबसे अच्छा इंसान और सच्ची कॉमेडी अगर सेट पे करता है वो है किशोर कुमार। मैंने उनके साथ काम किया था ना अपना बेवकूफ, और एक पिक्चर किया था मैंने बम्बई का ठग। अरे सेट पे एक मिनट वो चुप नहीं बैठने का, ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर ना स्प्रिंग पड़ा हुआ है, चाबी भर दी और वो उछल रहे। और हर एक डायरेक्टर का नकल, हर एक का नकल, एक मिनट चुप नहीं। वो थे कॉमेडियन, स्क्रीन में भी कॉमेडियन, जो तो आपको स्क्रीन में दिखता करते हुए ऑफ टाइम में भी करते, सबको हंसाते रहना सेट पे।
0: इसी बात पे किशोर दा का एक फन सॉन्ग सुन लेते पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिड 70s में पब्लिक ने एंग्री यंग मैन वाले रोल्स पसंद करने शुरू कर दिए और इसीलिए सॉफ्ट रोमांटिक इमोशनल हीरो वाले रोल्स आउटडेटेड हो गए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसीलिए राजेश खन्ना का सुपरस्टार का टाइटल अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। अच्छा, अमिताभ बच्चन की सुपरस्टारडम के बारे में राजेश खन्ना जी से एक बार जब पूछा गया था तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: जो जिसकी किस्मत है और जो जिसका काम है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है, डेस्टिनी है आपकी। और मैं तो ये चाहूंगा कि भाई जब उन्होंने आनंद में मेरे से काम मेरे साथ शुरू किया और आज इस मुकाम पे पहुंचे, मैं तो बहुत बहुत ही उनको मुबारकबाद दूंगा और आई विल बी वेरी हैप्पी और आई विल बी एनवीइंग हिम कि इस मुकाम पर पहुंचना और ये कामयाबी हासिल करना, ये बहुत गर्व की बात है, उन्हीं के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी और जनता के लिए भी।
0: अच्छा, राजेश खन्ना अपने सुपरस्टार टाइटल के बारे में क्या सोचते थे, सुनिए उन्होंने एक बार क्या शेयर किया था।
1: नहीं जी, स्टार तो नहीं, मैं तो एक्टर हूँ, एक्टर था, एक्टर हूँ और एक्टर रहूँगा। स्टार बीच में मैं कहीं बन गया था, जिसे सुपरस्टार कहते हैं, स्टार जो भी है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक्टर को मैं जानता हूँ, था, हूँ और हमेशा रहूँगा।
0: चलिए अब ऐसी फिल्म का गाना सुनते हैं जिसमें इन दोनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि यस, इस टाइटल के ये दोनों वाकई में हकदार थे। आनंद फिल्म का गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी।
2: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोज उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या? ये
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लगाया नहीं
2: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब
2: नहीं। मैं कल को
1: फोटो खींचे,
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
1: अरे
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी। हेलो, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

भाई 1989 में जब मैंने प्यार किया फिल्म आई थी, इसने अपना एक छोटा सा रिकॉर्ड बना लिया था फिल्म फेयर अवार्ड्स का। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 13 नॉमिनेशंस में से इसे 7 अवार्ड मिले थे, बेस्ट फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, बेस्ट डेब्यू एक्टर, बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस। और ये रिकॉर्ड फिर तोड़ा DDLJ ने 1995 में 10 अवार्ड जीतकर। चलिए, अवार्ड का आना जाना तो लगा रहता है, मेन बात है दिल जीतना। और मैंने प्यार किया फिल्म ने ये काम बखूबी कर लिया था सबसे दोस्ती करके। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची योगा क्लास, मिर्ची योगा क्लास।
2: परेशानी? जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें। वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
3: सेलिब्रेट योगा विद हर्ट ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

सो रिसेंटली मैंने मूवी देखी 1972 की जोरू का गुलाम। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में है काका, राजेश खन्ना एंड नंदा, और ओम प्रकाश साहब भी हैं। सो बेसिकली ओम प्रकाश साहब बहुत रईस होते हैं, उनको अपने पैसे पे घमंड होता है। उनकी बेटी नंदा, इनको प्यार हो जाता है राजेश खन्ना साहब से, जो एक पेंटर होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, और ओम प्रकाश जी की मर्जी के खिलाफ ये उनसे शादी कर लेती है नंदा। अब सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बनते हैं कि राजेश खन्ना साहब को घर में नौकर बनके जोरू का गुलाम बनके रहना पड़ता है। उस वजह से क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, क्या क्या गूफ अप होते हैं, इज सो मच फन। राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग, ओम प्रकाश साहब की एक्टिंग, टू गुड। इसी बात पर काका जी की फिल्म का ही गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अर्ज किया है परवीन शाकिर नाम की शायरा है, उनका ये शेर है। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं शेर ये नहीं था, शेर अभी मैं सुना रही हूँ। वो बचपन की नींद तो अब ख्वाब बन गई, क्या उम्र थी कि रात हुई और सो गए। इसी बात पर बच्चों के लिए नींद पर एक पोएम सुनिए, शौकत परदेसी की पोएम है नींद परी। शाम ढली हवा चली, दीप जले काम रुके, चांद हंसा रंग जमा, रात बढ़ी ओस पड़ी, हूल हंसे प्यार लिए, आ ही गई छा ही गई, सपनों भरी नींद परी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Grabana.
1: Murga, murga. La virpa, la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Mirchi.
4: It's Navid.
3: बोल रहा हूँ.
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
3: वो आपको मुझे बताना होगा.
4: तो मैं अभी बता दूँ?
3: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
4: संजना.
3: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का.
3: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई दिमाग में नहीं आ रहा.
3: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क
3: ही जाते हैं. अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में. जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताऊं.
3: ओके चलिए.
5: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
5: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का.
3: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है. मैं रेडियो मिर्च पे.
4: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था.
3: हम तो किसी का ही बना देते हैं. आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू. थैंक यू.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: ए पगला,
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा.
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: पकड़ो इसे ना छोड़ो।
1: अरे रे रे रे रे भैया ना तोड़ो।
0: ओए डर जा बाबी।
1: अरे जा रे शराबी, क्या हो राजा?
0: गली में आ जा।
2: होली होली
0: भांग की गोली, ओ नखरे वाली।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: Mirchi.
1: Isca bana, pusca bana, saca bana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बकवास दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी
3: का कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
3: क्या, कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब नहीं।
3: मैं कल को
2: फोटो खींचे,
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है। अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
2: कहाँ होता है बताइए।
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: only on 92.7 FM Radio Mirchi New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका.

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस्य बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
2: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
3: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन

से टकर टकर वन उपवन छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा सघन लता पेड़ों से टकर टकर वन उपवन छाया है अंधियारा। या शाम कनाई ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर। नंदराय आदेश मान कर चली राधिके ले माधव को, तट लीला निकुंज में रात

0: जो सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब आपको अपने कर्म का फल ना मिलने की वजह से निराशा या उदासी महसूस हो तो ऐसे समय में खुद को शांत और स्थिर कैसे रखें? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, क्या होता है, हर इंसान अपने आप को मापने का जो तरीका होता है, जब तक वो शायद स्पिरिचुअली अवेयर ना हो या इतना लेट्स से मैच्योर नहीं हुआ हो, उसको लगता है जब मैं काम कर रहा हूँ उसका एक आउटकम होना चाहिए। हर चीज़ का एक आउटकम होता है, तभी उसको नापा जाता है कि वो सफल है या नहीं। तो जब कोई काम इंसान कर रहा होता है और वो देखता है कि भाई इसका आउटकम ये है कि मैं कर रहा हूँ इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन सामने वाला कर रहा है उसको प्रमोशन मिल रहा है या इंक्रीमेंट मिल रहा है या बेहतर जगह पे पहुंच गया, तो वो अपने आप को उससे कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता है शायद यही सही तरीका होगा और मैं सही काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे केस में उसको कैसे हम एडवाइस करें?
4: आप अगर लॉ, स्पिरिचुअल लॉ की बात करते हैं, स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, ये कॉमन लाइन आपको सुनने में आती होंगी, कर्म कर
3: फल की चिंता मत कर।
4: तो ये फिर क्यों लिखा गया है? अब दो चीजें हैं, या तो हम उसके आधार पर चले तो हम अंदर से हमारे अंदर शांति रहती है, क्योंकि फल तो आना ही है, वो तो आना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम फल की चिंता करने लगते हैं तो हम कर्म में अनएथिकल हो जाते हैं। कर्म कर फल की इच्छा नहीं कर, मना आप अपना सारा फोकस किसके ऊपर रखो, कर्म के ऊपर। आपका कर्म जितना एक्यूरेट हो, जितना राइट हो, जितना सत्य के क्लोज हो, उस फल ने आना ही है। लेकिन अगर आपका फोकस, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करते हैं, आज आप किसी को भी पूछेंगे कि बिजनेस का पर्पस क्या है, तो वो कहते हैं बिजनेस का पर्पस है
3: प्रॉफिट
4: कमाना,
3: बट नॉर्मली इट इज टू हेल्प बिल्ड समथिंग, ऑर्गेनाइज समथिंग, हेल्प पीपल।
4: नॉर्मली नहीं है,
3: होना ही चाहिए।
4: अब आपने जैसे ही कहा ना उसका पर्पस प्रॉफिट है, तो ये वही चीज होगी जो आप कह रहे हैं कि हम तुलना तो उससे ही करेंगे ना, फल से ही करेंगे। लेकिन एक्चुअली बिजनेस का पर्पस प्रॉफिट आएगा, आप वो बिजनेस थोड़ी ना करेंगे जो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लेकिन जो आपकी सोच होनी चाहिए, जो आपकी वृत्ति में होना चाहिए, वो धन कमाना नहीं है। आपकी वृत्ति में होना चाहिए कि ये बिजनेस हम कर रहे हैं तो जो कस्टमर है
3: वो खुश रहे,
4: सैटिस्फाई होना चाहिए। आप किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर जाएं, वहाँ बाहर क्या ये लिखा होता है कि हमारे इसका पर्पस है प्रॉफिट कमाना?
3: वो कहते हैं कस्टमर इज किंग।
4: हाँ, कस्टमर इज किंग, इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है, हार्ड वर्क है, पेशेंस है, वो ऐसे साथ सब जगह पर वैल्यूज का पूरा बोर्ड लगा के रखते हैं, ये हम हैं। तो लिखने में ये हम हैं, बोलने में भी हम ये हैं, विजन मिशन स्टेटमेंट में भी हम ये हैं, लेकिन सोच में हम कुछ और हैं। सोच से सृष्टि बनेगी, संकल्प से सृष्टि बनेगी। इसीलिए कर्म आप पूरी ऑनेस्टी से करें, आपको फल मिलना ही है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या बिजनेस का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना है या फिर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही जरूरी है? आइए इस बारे में समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, जब हम बिजनेसेस की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि बिजनेसेस का जो मकसद होता है वो होता है कस्टमर की सेवा करना, कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करना ताकि उसका बहुत फायदा हो, और इसलिए बहुत सारे मिशन स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसमें लिखे होते हैं कि इंटेग्रिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर हमारे लिए किंग है, वगैरह वगैरह वगैरह, और ये बहुत जगहों पर छपा भी होता है। ये लिखना बहुत जरूरी होता है और बात करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज जब भी बोर्ड मीटिंग होती है, जब भी कोई एनुअल रिपोर्ट छपता है जो बाहर पब्लिक डोमेन में आता है, वो ये सारी बातें नहीं आती। बात आती कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रही आपकी, आप पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर तक कितने बढ़े, आपके सेल्स कितने हुए। मापदंड जो है, जो एस्टैब्लिश्ड है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो यही है। तो अगर एक बिजनेस इस पे ध्यान नहीं देगा तो उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो यूजर्स हैं, जो यूज करने वाले, वो उनको यूज ही नहीं करेंगे, फिर वो एक एनजीओ ही बन जाएंगे।
4: नहीं, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक ही नहीं करें। हम कह रहे हैं उसको वृत्ति में नहीं रखें। वृत्ति माने एटीट्यूड। आप
3: अच्छा।
4: हर दिन किस एटीट्यूड से वहाँ पर काम कर रहे हैं?
3: अच्छा।
4: एक है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, और एक है कि मेरा एटीट्यूड है कि
3: मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है,
4: प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पर रहना है, टीम को भी प्रिंसिपल वैल्यूज पर रहना है, उसके बाद आपका कुछ एक प्रॉफिट आएगा। कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पर रहना है, टीम को भी प्रिंसिपल वैल्यूज पर रहना है, उसके बाद आपका कुछ एक प्रॉफिट आएगा। आएगा कि नहीं? क्योंकि

0: लेकिन अगर आप उसको अपना एम बना लेते हैं तो आप कहीं प्रिंसिपल में कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: क्या सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को ही सक्सेस का पैरामीटर माना जाना चाहिए? आइए इस विचार पर गौर करें।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
5: ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो बिजनेस में नए नए घुसते हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी एकमात्र एम होना चाहिए। अगर ये प्रॉफिटेबल हो गया तो हम सक्सेसफुल हैं।
6: अगर हम इसे कोई एम रखते हैं तो इसीलिए तो आज मेजर इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेबल थे, सर्विस के लिए थे, आज हम क्यों कहते हैं वो करप्ट हो गए। हम हॉस्पिटल्स के लिए कहेंगे, हम स्कूल्स के लिए कहेंगे, पहले थोड़ी ना ऐसा होता था। आज आपका एम हो गया कि वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तो फिर वहाँ करप्शन वर्ड भी तो यूज होने लग गया ना, कि इनका इतना टारगेट है, सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए, कि इससे कनेक्टेड है, आप तो इससे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो जो वृत्ति है वो बदल गई। अब उसके अंदर ये नहीं था कि वो जो पेशेंट है बिल्कुल ठीक होकर के जाना चाहिए, वो वापस नहीं आना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है अब था कि महीने के अंदर कम से कम इतना देखना है, इतना आना चाहिए, इतना टारगेट मीट करना है, तो फिर कहाँ से, फिर आप डाउट भी तो आने लगा। पहले आप डॉक्टर को थोड़ी ना डाउट करते थे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन प्रोफेशन। आप कहाँ डाउट करते थे? डॉक्टर आपके लिए भगवान होता था, उसने कह दिया, आपने आंख बंद करके उस चीज को मान लिया। आज थोड़ी ना कोई आंख बंद करके मानता है, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन। पहले टीचर को पेरेंट से भी ज्यादा हक होता था बच्चे के ऊपर। पेरेंट पहले कहते था ये आपका बच्चा है, आपको जैसे करना है आप इसको कर ले। अभी जब वहां पर भी एटीट्यूड सारा चेंज होने लगा,
5: वहां भी सवाल आ गया।
6: तो अगर आपका एटीट्यूड, आपकी वृत्ति बदलेगी तो सृष्टि भी बदलेगी।
5: बहुत बढ़िया।
6: सृष्टि के अंदर भी वो टैग नहीं रहेगा कि ये कुछ प्रोफेशंस, आई वुडन्ट से प्रोफेशंस पर, बिजनेस हाउसेस आज भी हैं जिनके लिए आप कहेंगे नहीं, इनके लिए पीपल अबव प्रॉफिट है।
5: होता है, कई में होता है,
6: कई ऐसे है, आप थोड़े होंगे, कम होंगे, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, इन्होंने हमेशा ऐसे काम किया है कि इनके लिए पीपल प्रायोरिटी है, प्रॉफिट सेकंड है, और वो प्रॉफिटेबल नहीं है ऐसा नहीं है।
5: अच्छे कर रहे हैं,
6: ज्यादा अच्छा करेंगे।
5: सही बात,
6: क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो वो ही ज्यादा अच्छा करते हैं जो लोगों का ट्रस्ट कमाते हैं।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: जब हमारी वृत्ति में सिर्फ पाने या लेने का भाव आ जाता है तो वो हमारी पर्सनल ग्रोथ को कैसे प्रभावित करता है, आइए जानते हैं।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
5: सिस्टर, जब हम बिजनेसेस की बात कर रहे थे तो आपने बताया कि प्रॉफिट एकमात्र मोटिव नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सर्विस अबव सेल्फ और पीपल अबव प्रॉफिट, ये बहुत जरूरी है। एक अजीब सा सवाल मेरे मन में आया, पूछने की हिमाकत कर रहा हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे रिलीजियस धार्मिक जगहें हैं, वो भी शायद इस रास्ते पर निकल गए हैं। वो कहीं ना कहीं शुरू हुआ था कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि उनमें भी टारगेट्स आ गए हैं कि इतने डोनेशन आने चाहिए, इतने प्रसाद या जो है इतने पैकेट्स बिक जाने चाहिए, इतनी मालाएं होनी चाहिए। ऐसे में आस्था बढ़ रही है, लोग बहुत जा रहे हैं, लेकिन जो मूल भाव है जिस वजह से वो शायद शुरू हुए थे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है।
6: Absolutely.
5: तो ऐसे केसेस में क्या करें?
6: क्योंकि वृत्ति की बात है ना, अब वो चाहे मंदिर में कोई बैठा है, वरना किसी धार्मिक स्थान पर बैठा है, या किसी बिजनेस हाउस में बैठा है, एक बार आपकी वृत्ति के अंदर लेने की भावना आ गई तो फिर वहाँ पर आपकी पर्सनल गिरावट शुरू हो जाती है। अगर आप किसी धार्मिक स्थान पर भी हैं, वो भी चलते तो स्थान चलो अगर डोनेशन से भी चलते हैं, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से भी चलते हैं, पर आपके मन में वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो फिर दान पेटी आदि क्यों लगा कर रखते हैं कि आपको पता भी नहीं चले किसने क्या किया। पहले तो कई सारे प्रोफेशंस के अंदर भी फेथ हीलिंग होती थी, इस तरह के मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, फेथ हीलर्स होते थे, आप फेथ करके उनके पास जाते थे, वहां भी एक दान पेटी लगी होती थी, आपको अपनी भावना से जो करना है कर दो। वकील होते थे, लॉयर्स, वो भी काला कोट पहनते थे, लंबा पीछे पॉकेट होता था, हमने सर्व कर दिया आपको,
5: अब आपको जो मर्जी आप दे दीजिए,
6: पीछे पॉकेट, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा कि आपने क्या किया। और ऐसे ही धार्मिक स्थानों के अंदर आपकी जो भावना है
5: वो दीजिए,
6: आप जो करते हैं उससे ये सेवा और बढ़ पाती है। कार्य चल रहा था, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये तो कार्य वैसे भी भगवान के कार्य होते हैं, करण करावन हार है। अच्छा, जब वो नहीं किसी के मन के अंदर वृत्ति में आ गया गलत, तो नाम भी तो खराब हुआ ना। आज लोगों का फेथ भी तो कम हो गया।
0: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब धार्मिक स्थलों पर कमर्शियलाइजेशन नजर आने लगे और मन में सवाल उठने लगे तो उन डाउट्स को कैसे समझें और संभालें, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: बचपन से पता नहीं क्या है, मैं कई जगह जाता हूँ। मैं गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, सिनेगॉग हो, चर्चेस हो, मैं सब जगह गया हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है। चुपचाप जाके बैठ जाता हूँ, मुझे कभी कभी पता नहीं होता कि यहाँ तरीका क्या है, क्या करना होता है। धीरे धीरे मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि बहुत जगहों पर ये कमर्शलाइजेशन हो गया है कि आप वहाँ जाइए, वो टोकन लेके आइए, फिर आपको वहाँ पे ये दान करना है, फिर आपको वहाँ पे ऐसा करना है। और मुझे लगा कि ये जो जगह है जहाँ पे आके मैं शांति में बैठ सकूँ, वो जगह ही मुझे अगर नहीं मिल रही है तो फायदा क्या है। तो आप जो बात कह रही हैं कि श्रद्धा कम होती है, एक्चुअली ऐसा मैंने नहीं देखा, भीड़ तो बढ़ते हुए देखी मैंने। शायद अंधभक्ति है, शायद लोगों को विश्वास है कि ये विघ्न हर्ता है हमारे, वो भगवान जो हैं, या मस्जिद में जो काबा है, या जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे आऊँगा तो मुझे शांति भी मिलेगी और शायद मेरे सवालों का या प्रॉब्लम्स का हल मुझे मिलेगा। तो श्रद्धा कम नहीं हो रही है,
4: भीड़ तो हॉस्पिटल में भी बढ़ रही है। भावना तो बदल रही है ना, भीड़ क्यों बढ़ रही है? आप बीमार हैं तो आप जाएंगे भी, चाहे वो करप्टेड भी है। ऐसे ही अगर आप परेशान हैं तो आप जाएंगे ना। अब उसमें आपको कोई एक्सप्लॉइट कर ले तो आपका मन दुखता है। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में आप पहले बीमार जा रहे हैं और वहां पर ही कोई आपको ठगने का सोचे तो आपका मन कितना दुखी होता है।
3: क्या करें सिस्टर, अगर हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सिनेगॉग चर्च में भी नहीं जा सकते।
4: हम सब जगह जाते हैं और हम अपने कर्म ठीक रखते हैं। हम खुद एक एग्जांपल बनते हैं, हम अपने कर्म से अपना भाग्य ठीक बनाते हैं और हम लोगों को एडवाइस देने के जगह वो जीवन जी करके दिखाते हैं कि हमारे से किसी को इंस्पिरेशन मिले। हर जगह पर दोनों आपको मिलेंगे, आपको करप्ट डॉक्टर मिलेगा तो ऑनेस्ट से ऑनेस्ट भी मिल जाएगा, वो भी जी तो रहे हैं ना, उनको देख करके भी कोई प्रेरणा ले रहे हैं। आपको देशभक्त मिलेगा तो देशद्रोही भी मिलेगा। आपको यहाँ पर भी कोई ऐसा भी मिल जाएगा जिसकी धन कमाने की वृत्ति है, और आपको ऐसा भी मिल जाएगा जो निस्वार्थ भावना से सेवा के लिए बैठा है। उसको आपसे लेने का कुछ भी नहीं है, उसको जो भगवान से मिला है वो आपको निस्वार्थ भाव से देना चाहता है। कॉमन मैन के इंटेलिजेंस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनको पता चल जाता है। क्योंकि लोग 10% देखते होंगे, 10% सुनते होंगे, हो गया 20%, 80% फील करते हैं।
3: अरे वाह, ये बिल्कुल सही बात कही आपने।
4: आप ये फील करते हैं कि मुझे वहाँ जाकर के कैसा लगा,
3: बिल्कुल
4: मुझे अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, फिर वो डिसाइड करेंगे कि मुझे नेक्स्ट टाइम वहाँ पर जाना है।
3: और एक बार बुरा लग गया तो मन हट जाता है, वहाँ से आप फिर नहीं जाते।
4: लेकिन इसमें ये जरूर समझना है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये हो सकता है
3: कि बहुत अच्छे लोग भी।
4: हाँ, मतलब इस तरह से अपने विश्वास को खत्म कर देना एक ही फ्रटर्निटी के अंदर। मैं इसीलिए कह रही थी आपको ऑनेस्ट से ऑनेस्ट भी मिल जाएगा, करप्ट से करप्ट भी मिल जाएगा एक ही फ्रटर्निटी के अंदर। एक बार आपका एक्सपीरियंस खराब हुआ तो वो फ्रटर्निटी ही खराब है, सारे के सारे ढोंगे हैं।
3: नहीं,
4: ये जरूरी नहीं है। आपको एक जगह ठीक नहीं लग रही, बेनिफिट ऑफ डाउट जाता है, सब नंबरवार है, परफेक्ट नहीं है, पर आप अपना फेथ ही खत्म कर दें तो फिर उसमें आपका नुकसान है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
7: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णव केटरर्स, द फाइनेस्ट इंडोर एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस इन USA. Live cooking on premises for engagements, marriage, baby shower, birthday parties and adult daycare. We make fresh farsan and sweets in USA. Also providing daily tiffin services with delivery in New Jersey and New York. Call Bombay Express and Vaishnav Caterers today at 732-986-6241. Or visit 2849 Woodbridge Avenue, Edison, New Jersey.
8: Positivity koi location thodi hai ki map pe dala aur pahunch gaye. It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जो लोग धार्मिक या सेवा के कार्यों से जुड़े होते हैं, अगर उनका व्यवहार आपको ठीक ना लगे तो उस परिस्थिति को कैसे देखें? आइए इस बारे में समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, जब भगवान की बात आती है श्रद्धा बहुत होती है, लेकिन शायद मैं जहाँ गया मुझे लगा कि ये व्यवहार लोगों का सही नहीं है जो कार्य कर रहे हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं, मन थोड़ा हट गया, वहाँ पे मैंने जाना बंद कर दिया। ऐसे केस में क्या होता है, अगर कुछ खराब हो भी जाता है तो मैं बात किससे करूँ? चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, सिनेगॉग हो, चर्च हो, मैं किन से जाके बात करूँ? यहाँ कोई मैनेजमेंट तो नहीं, और है भी तो मुझे नहीं पता। तो ऐसे केस में मन हट जाता है तो वापस जाने का मन ही नहीं करता।
4: मन हट जाता है, लेकिन मन को चार्जिंग की तो जरूरत है ना।
3: बिल्कुल है,
4: ये बेनिफिट ऑफ डाउट आपको बिल्कुल जाता है कि अगर कोई आपको सामने से मांग रहा है तो आपको मन नहीं करता, आप कहते ये तो मैं ही भगवान से लेता हूँ, ये तो है ही लेने का स्थान, और मैं निस्वार्थ भावना से कुछ करना चाहूँ तो अलग बात है। वैसे भी कोई मांगता है तो आपका मन हट जाता है, लेकिन आप उस स्थान पर नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हैं, आज आप एक डॉक्टर के पास गए थे, उसने आपको चीट किया, आपने रियलाइज किया कि उसने आपको चीट किया, तो वापस उस डॉक्टर और उस हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे।
3: बिल्कुल नहीं,
4: सब भी कहेंगे तो नहीं जाएंगे।
3: बिल्कुल,
4: पर अगर आप बीमार होंगे तो हॉस्पिटल ही नहीं जाएंगे।
3: नहीं, वो तो जाना पड़ेगा,
4: वो तो जाना
3: किसी और डॉक्टर के पास, किसी और
4: के पास जाएंगे, किसी दूसरे के पास जाएंगे। और हम कैसे फेथ करते हैं? पहला तो कोई हमें कहता है वो अच्छा है, नहीं नहीं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ऑनेस्ट है, वो अच्छे इंसान है, और दूसरा हमारा अनुभव। बस इसमें भी ऐसा ही होता है।
3: अच्छा, ये अच्छी बात कही आपने।
4: दोनों चीजें, आप फर्स्ट टाइम तो फेथ से ही जाएंगे ना, आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप किसी के पास भी जाते हैं, आप कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है, तो कोई कहता है नहीं आप वहाँ जाओ आपको अच्छा लगेगा, मेडिटेशन सीखो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। अभी वो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, वो किसी का है, लेकिन आप फेथ रख करके पहला कदम उठाते। हिम्मत बच्चे मदते बाप, मना भगवान भी मदद कैसे करेगा जब तक आप पहला कदम नहीं रखेंगे। सेकंड आपका एक्सपीरियंस है, अगर बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें इससे बेनिफिट हुआ है
3: तो ट्राई करते,
4: तो ट्राई करना चाहिए। और अगर कहीं पर कोई एक अगर ऐसा होता है ना जिससे आपका मन दुखा, तो चांसेस है बहुतों का मन उनसे दुखेगा।
3: तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि शायद एक जगह से, धार्मिक जगह से आप थोड़े से दुखी हैं या परेशान हैं किसी इंसान से हैं, लेकिन रिश्ता तो आपका ऊपर वाले से है, तो उस चक्कर में दूसरी जगह जरूर जाओ।
4: हाँ, धर्म क्यों छोड़े? धर्म माना धारणा, आप धारणाओं को तो नहीं छोड़े, प्रिंसिपल्स और ट्रूथ को तो नहीं छोड़े, ये ठीक है।
3: बहुत अच्छी,
4: कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, आप व्यक्ति को छोड़ दें, लेकिन उस व्यक्ति के चक्कर में आप भगवान और उसकी टीचिंग्स और उसके प्रिंसिपल्स और उसकी धारणाएं को ही छोड़ दें,
3: बहुत जरूरी है,
4: वो तो आपका नुकसान है ना उसमें।
3: बहुत बढ़िया,
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हार्ट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: शारदा शिंदे हैं, वो लिखती हैं छत्रपति संभाजी नगर बीड बाईपास से कि मैं डेली आपका प्रोग्राम सुनती हूँ। मेरा बेटा 14 साल का है, मैं उसे कुछ अच्छा सिखाऊं तो सुनता नहीं है, समझता नहीं, लेकिन बुरा कुछ भी जल्दी कैच कर लेता है। इन सब गलत चीजों से उसे दूर कैसे करूं?
3: एज अ पेरेंट हम चाहते हैं हमारे बच्चे परफेक्ट हों, पर उनके ऊपर कई चीजों का इन्फ्लुएंस होता है, सिर्फ पेरेंट का ही नहीं होता। उनके ऊपर स्कूल का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, सोशल मीडिया का कई इन्फ्लुएंसेस होते हैं
2: जी।
3: और कभी कभी वो करना ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें उनको एक्सेप्टेंस मिलती है। हमें लग रहा होता है बुरा है, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। अगर वो चीजें नहीं करता है तो शायद उसको सुनना पड़ता है कि वो ओल्ड फैशन्ड है, ऑर्थोडॉक्स है,
2: कूल नहीं है।
3: इसलिए वो चीजें कई बार नहीं भी करना चाहता तो भी कर देता है। इसलिए ऐसे बच्चे को सिर्फ यही नहीं समझाना होता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसको शक्ति की जरूरत है। 14-15 साल में आपको समझ में आ जाता है, पर आपके पास राइट करने की पावर नहीं होती। आप पीयर प्रेशर में आकर के, सोशल प्रेशर में आकर के वो कर देते हैं जिसमें आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। तो आप केवल उनको शिक्षा नहीं दें, लेकिन अभी कोई कहेगा पावर कैसे दें? तो पावर, अगर आप एज अ मदर वरिड नहीं होते, परेशान नहीं होते, डिस्टर्ब्ड नहीं होते, अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं, घर का एक अच्छा पावरफुल एनवायरनमेंट बनाते हैं, परमात्मा की याद में भोजन बनाकर उसको खिलाते हैं, ये सारी चीजें उसको एम्पावर करता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
6: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एसटी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक और सवाल आया, वो कहते हैं कि जब मैं डीप मेडिटेशन में होता हूं तो अक्सर किसी के मेडिटेशन एरिया में आने से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, ऐसा क्यों होता है?
2: ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन का पर्पस है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमें डिस्टर्ब करती है कि मैं मेडिटेशन कर रहा था, आपने उस समय टीवी क्यों चलाया, आपने उस समय फोन पर क्यों बात करी। इस वन टाइम समबडी वाज शेयरिंग कि वो भाई भी ऐसे ही वेरी सिमिलर क्वेश्चन कि मैं जब मेडिटेशन करता हूँ उसी समय मेरी वाइफ फोन पर जोर जोर करके अपने सिस्टर से बात करती है। फिर उनको कहा, देखो ये आवाज आपको सुनाई दे रही है। कहते कौन सी आवाज? कहते ये जो जोर जोर की आवाज है, तो नीचे एक सब्जी वाला जोर जोर के सब्जी बेच रहा था
1: लेकिन वो नहीं सुनाई दिया।
2: तो कहते वो तो उसका काम है, वो तो वो करेगा, उसको चिल्लाना पड़ेगा। उस सब्जी वाले का जो काम है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया था,
1: लेकिन अपनी बीवी के तेज फोन पे बात करना आपने एक्सेप्ट नहीं किया।
2: आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ
1: उस समय वो ना करे।
2: सो अगर हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो वो कोई हमारी फील्ड में आता है उसके कारण नहीं होते। हमारे मन ने कोई एक्सपेक्टेशन क्रिएट की होती है, वो फुलफिल नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं, अंदर हो रहे हैं ना डिस्टर्ब। हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना।
1: बिल्कुल।
2: तो अपने को याद दिलाएं कि मेडिटेशन का पर्पस ही ये है कि हमें कुछ भी हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, कि इररिस्पेक्टिव सिचुएशन कैसी है, इररिस्पेक्टिव लोगों का व्यवहार कैसा है, इररिस्पेक्टिव वेदर कैसा है, चैलेंजेस कैसे हैं, आप अंदर में काम और स्टेबल है और उस स्टेबिलिटी से आप रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी तो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है।
1: और अगर अभी नहीं हो रहा तो धीरे धीरे हो जाएगा। अपने आप को भी वक्त दें और दूसरों पर भी इरिटेट ना हो।
2: जी,
1: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: This is Priscilla and you're officially checked into Mirchi Mornings. जहाँ पर चाय तो है गर्मा गर्म, साथ साथ में तुम्हें emotionally support भी करती है. Weather के बारे में भी हम बात करते हैं, देसी nostalgia जीते हैं और around the world की खबरें भी जानते हैं. साथ साथ में कुछ मिर्चीदार bangers और मेरी ढेर सारी चटपटी मिर्चीदार बातें तुम्हें मिलती है. Only on your favorite show which is named Mirchi Mornings. और आज का agenda काफी simple है. थोड़ा सा music, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा gossip minus the problematic energy. And full power vibes to survive emails, commute, school drop-offs और वो 9 बजे की meetings जिसमें कैमरा ऑफ करके भी काफी स्ट्रेस दिखाई देते हैं हम. And can we appreciate देसी expat life for one second? सुबह सुबह अमेरिका में उठकर ब्रेकफास्ट में पोहा, जलेबी, परांठे, इडली सांभर और आलू की भुजिया और रोटी खाते हुए बैकग्राउंड में बॉलीवुड के गाने सुनते हुए मम्मी को मैसेज भी कर देते हैं, लेकिन साथ साथ में चाय लाटे भी पी लेते हैं. सो वेयरएवर यू ट्यूनिंग इन फ्रॉम, न्यू जर्सी का ट्रैफिक हो, बॉस्टन की कॉफी लाइन हो, डीसी का ऑफिस एलिवेटर हो, या फिर सीक्रेटली यू लिसनिंग टू मी व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम, स्टे राइट हियर, यानी कि मेरे साथ मिर्ची मॉर्निंग्स पर. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. इंस्टा और एक्स पर मुझे फॉलो कर लो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप करना है मुझे तो 9033 मिर्ची इज द नंबर, 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirci.
1: Iskaba la puskaba la sakaba la. Yabala. Burga burga. La virba la burga. Mirci burga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्रो फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
2: तो
3: नहीं होते,
2: थोड़ी ना
3: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे, तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: अब गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है,
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
12: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
11: Renew?
12: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
11: What better way to celebrate than with something timeless?
12: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
14: Chamakte Sitare 2026.
13: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
14: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
15: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islip.
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
18: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
17: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
17: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
11: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

0: प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। और अब हम चलने वाले हैं थोड़ा सा टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए। 1858 में अ टॉल गाय नेम्ड इब्राहिम लिंकन बेसिकली ड्रॉप द ओरिजिनल माइक ड्रॉप लाइन, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैनॉट स्टैंड। देन जंप टू 1903, फोर्ड मोटर कंपनी वॉज बॉर्न। एंड देन 1963 में एब्सोल्यूट क्वीन एनर्जी वैलेंटिना टेरेश्कोवा बिकेम द फर्स्ट वुमन इन स्पेस। 1976 में अ सीरियस पॉज इन हिस्ट्री, students in Soweto, South Africa stood up against apartheid. And now mode shift, because 1978 Aya Greece hit the theaters and suddenly leather jackets and dramatic eye contact became personality traits. And fun fact, fans of Ulysses celebrate today as Bloom's Day. And in 2015 another chapter of modern political history began in the US, but hum yahan politics nahi playlist discuss karne wale hain. And abhi filhal chalate hain mirchidar bangers tumhare liye only on मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: परेशान ही, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
7: Chamakte Sitare 2026.
6: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search is the Nara Krishna Jewelers Me exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
4: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
5: लिसनर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you on Mirchi Mornings. और अब वेदर चेक करने का टाइम आ चुका है. तो आज का सीन क्या है? Right now it's around 56 degrees Fahrenheit and it's sunny. मतलब वेदर इज गिविंग I woke up like this and I'm going to be productive वाली वाइब. And guess what? Zero precipitation in the last 24 hours and zero precipitation is expected in the next 24 hours. यानी कि रेन ने ऑफिशियली आज हमको गोस्ट कर दिया है. आज का टेम्परेचर रेंज इज गोना गो फ्रॉम 54 डिग्रीज फारेनहाइट टू अ लवली 77 degrees Fahrenheit, but it will feel like 53 to 78 degrees Fahrenheit. And if you're wondering कि आज बाहर जाते टाइम अम्ब्रेला लेकर जाना है कि नहीं जाना है, तो नहीं जाना है because there is not going to be any rain. So यार मॉर्निंग में बाहर निकलते टाइम लाइट जैकेट और चाय लेकर साथ में जाना, लेकिन आफ्टरनून आते आते तुम्हें थोड़ा सा समर वाइब फील होने वाली है एंड इवनिंग में थोड़ी सी वार्म्थ फील होने वाली है. इसीलिए आज के दिन भी लेयर का प्लेयर बन के बाहर निकलो, वे योर SPF 50 plus वाला सन ब्लॉक एंड साथ साथ में कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. और मिर्ची लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि मेरे साथ मिर्ची मॉर्निंग्स पर बने हुए हो. मेरा नाम है प्रिसला. मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल मिर्ची दार बैंगर्स का टाइम है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो देयर माय देसी फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब टाइम आ चुका है जानने का
2: मिर्ची आवर का थ्री।
1: सबसे पहले रशियन Tu-22 M3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर क्रैश ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग फ्लाइट इन साइबेरिया। गुड न्यूज इन अ सीरियस सिचुएशन इज दैट अथॉरिटीज रिपोर्टेड द क्रू सेफली इजेक्टेड एंड देयर वर नो रिपोर्टेड कैजुअल्टीज ऑन द ग्राउंड। एंड अब टूबर US वाइस प्रेसिडेंट JD Vance रिसेंटली स्पोक पब्लिकली अबाउट कन्वर्सेशंस अराउंड फेथ एंड सेड सम ऑफ इट्स बेस्ट डिस्कशंस अबाउट रिलीजन हैव बीन विद हिज वाइफ Usha Vance, कॉलिंग हर ब्रिलियंट एंड स्पीकिंग अबाउट रिस्पेक्ट अक्रॉस डिफरेंट बिलीव्स। And number three, per the opening matches of FIFA World Cup 2026 are seeing massive turnout. Reports say stadium occupancy has been running extremely high and average attendance is crossing 60,000 plus fans per match. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me Priscilla. Sunte raho mujhe aur saath mein follow karo Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.
3: Nacho all night. Do you feel alright? Wanna nacho all night?

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Rambala!
1: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
2: ¡Mirchi, murga! ¡Acá!
3: हेलो,
4: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
3: हाँ जी।
4: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
4: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
3: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
4: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बकवा दिया यार, सारे दिमाग।
3: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
4: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
3: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
4: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
3: अरे शर्म की क्या बात है सर,
4: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
3: किसी का
4: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
3: लगाया नहीं
4: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
3: गायब
4: नहीं। मैं कल को
3: फोटो खींचे,
4: अरे लेंस ऐसे
3: पूरे
4: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
3: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
4: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
3: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
4: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
3: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
4: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
3: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
4: गड़बड़
3: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
4: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है नहीं।
3: दिखाइए
4: दिखाइए आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
3: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
4: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
3: कहाँ होता है बताइए?
5: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
12: Chamakte Sitare 2026.
11: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
13: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
14: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
13: Renew?
14: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
13: What better way to celebrate than with something timeless?
14: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
15: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
16: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
17: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
18: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search is the Nara Krishna Jewelers Me exclusive diamond store.
19: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, Mario stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road.

0: Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला. This is Mirchi Mornings. And remember तारे ज़मीं पर? Of course you do. Remember Ishan's older brother? The neat, responsible sibling who looked like he definitely finished homework on time. Well, plot twist आ चुका है लाइफ में. हमारी नहीं, उसकी. The child actor named Sachet Engineer, who played Johan Awasthi, is now a gold medalist dentist and a pilot in the UK. Excuse me, actor, dentist, pilot. अभी तो LinkedIn को भी underachieving vibes feel हो रही होंगी. He completed his advanced dental studies in London and is eligible to practice in the UK. And he's previously described getting the movie as a happy accident, which honestly feels very, very filmy. Meanwhile, the rest of us are still deciding whether to reply to that one email today or emotionally recover first. But okay, tiny life lessons before chai gets cold. वैसे sometimes your biggest life chapter isn't the one people first know you for. And just like Johan Awasthi, speaking of upgrading, Tanishq presents Festival of Exchange. You're getting $5 extra per gram अगर exchange करते हो पुराना gold upon diamond purchases. And साथ साथ में अगर पुराना gold 9 carat से above है, उसे वहाँ पर लेकर जाओगे तो 0% deduction होगा exchange कराने पर. Of course ये सब कुछ मिल रहा है तुम्हें Tanishq के Festival of Exchange पर, तो किसी भी nearest Tanishq showroom पर पहुँचो. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. अभी मिर्ची मॉर्निंग्स पर बारी है गर्मा गर्म मिर्चीदार बैंगर्स की, वो एंजॉय करो. थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ मैं, तब तक मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: बच्चा आज का आसन है यस बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient.
3: Very complex.
4: Clumsy hoy.
5: Confusion hi confusion.
2: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samaj rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: It's 9:30 AM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
17: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: अच्छा बाबा मान गई, बस कर अब।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
5: पहले भी मैं तुमसे मिला।
6: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
7: Vishal Mishra.
8: Chetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
9: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
10: Batting to kaafi saare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
11: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
10: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Your feelings. Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Alright, my Mirchi fam, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. क्विक पॉज लेंगे हम यहाँ पर म्यूजिक का, क्योंकि अब टाइम आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पे सुनने का गोल्ड रेट अपडेट.
2: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड रेटिंग एट $4,330 $4,330 पर ट्रायउंस के साथ गोल्ड के प्राइस अबाउट $200 औंस अपवर्ड ट्रेंड पर है. $200 ट्राई औंस गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से ऊपर चले गए हैं. इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए, राज ज्वेल्स के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑफिस में आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड. आप गोल्ड का प्राइस आज लॉक करके ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं अप्रूव होने पे, और 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ बिना किसी हिडन फी के 9 मंथ की फाइनेंसिंग ऑप्शन में ज्वेलरी आपकी और गोल्ड का प्राइस लॉक करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं. कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: देयर यू गो, योर गोल्ड रेट अपडेट डन एंड डस्टेड. अब फटाफट से मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Pepe Milci.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Milci, murga.
3: Milci.
4: It's Navid.
3: बोल रहा हूँ।
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप वो लूप के लिए क्या करना पड़ेगा?
3: वो आपको मुझे बताना होगा।
4: तो मैं अभी बता दूँ।
3: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
4: संजना।
3: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का।
3: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
3: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं।
3: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूं।
3: ओके चलिए।
5: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
5: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
3: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
4: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
3: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कहते एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SciUSAInc.com.
10: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
11: Chamakte Sitare 2026.
10: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
12: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
13: I am not going to bed with you ever again.
12: But why? What did I do?
13: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
12: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
13: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
12: Yes, come soon. Honey!
13: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
12: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
16: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
18: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
20: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. जरा बारी है राशि जोन पार्ट वन की.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: एरीज यानी मेष राशि, फैंटेसी और रियलिटी के बीच में आज थोड़ा सा कनेक्शन वीक हो सकता है. बिफोर सेइंग दिस इज डेफिनेटली अ ग्रेट आइडिया, मे बी ओपन द कैलकुलेटर फर्स्ट. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक पिंक. लकी नंबर इज 16. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, समवन अराउंड यू इज टेकिंग फॉरएवर टू डिसाइड. आज लीडरशिप मोड ऑन कर लो, बस डिक्टेटरशिप मत ऑन कर लेना. लकी कलर इज पिस्टाशियो ग्रीन. लकी नंबर इज 22. जेमिनी यानी मिथुन राशि, योर स्टार्स आर गिविंग अ ग्रेट सीजन. Social plans, travel, random coffee turning into memories, of course say yes to all of that. Lucky color is ice blue. Lucky number is 31. Cancer yani Karak Rashi, people process life at different speeds. Aaj sabko apna personal express train mat samjho. Gentle wins and harsh loses. Lucky color is moon silver. Lucky number is 8. Leo yani ki Sinha Rashi, you want a break? Take it. You are not customer care for everybody's life. Reset without any guilt. Lucky color is orange. Lucky number is 17. And last but not the least, Virgo yani Kanya Rashi, you're overthinking something behind the scenes. Step away. The answer may arrive while folding laundry dramatically. Lucky color is dusty lavender. Lucky number is 5. And that was Rashi's zone part 1. थोड़ी सी देर में बाकी बची 6 राशियों को लेकर आऊंगी. मैं बोले तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, तो मैं अकेले छोड़कर नहीं जा रही हूँ. मिर्ची दर बैंगर्स के साथ छोड़कर जा रही हूँ. तब तक तो मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. दैट्स MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
3: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
2: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
4: अभी न जाओ छोड़ कर।
3: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search istunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Esalen.
10: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
11: पहले भी मैं तुमसे मिला।
12: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
13: विशाल मिश्रा
14: जेटली of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
15: and SaiUSAInc.com.
16: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
17: It's 10:30 AM. Mirchi time check.
18: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab... मिर्ची का
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
10: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my Mirchi fam. हम आ चुके हैं वो बिटर स्वीट मोमेंट पर जहाँ पर चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई है, इनबॉक्स थोड़ा सा भर गया ईमेल से और अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है. हमारी मॉर्निंग जो है ऑल टुगेदर हैज कम टू अ फुल स्टॉप टुडे. मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर. जाने से पहले जल्दी से तुम्हें क्रिकेट की एक अपडेट देकर जाती हूँ. थिंग्स गॉट अ लिटिल हीटेड आफ्टर इंडिया इज ट्राई सीरीज मैच अगेंस्ट श्रीलंका ए इन डैम्बूला एंडेड इन अ सुपर ओवर डिफीट. रिपोर्ट्स के हिसाब से वैभव सूर्यवंशी गॉट इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सचेंज विद अ श्रीलंकन प्लेयर आफ्टर द मैच एंड देयर वाज सम पुशिंग एंड वर्ड्स एक्सचेंज्ड बिफोर थिंग्स सेटल्ड. एंड ऑनेस्टली यार, स्पोर्ट्स जो है काफी पैशनेटली खेला जाता है. मेन जो है दे आर नोन फॉर देयर अग्रेशन, जो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा कम करना चाहिए. इमोशंस काफी हाई रन करते हैं अराउंड स्पोर्ट्स. बट समवेयर एवरी देसी पेरेंट लिसनिंग सेड, ठीक है बेटा बट मेंटेन करो थोड़ा सा डेकोरम, मतलब तुम भी बच्चे हो. ऑल्सो टाइनी रिस्पेक्ट मोमेंट फॉर सुपर ओवर्स बिकॉज रेगुलर स्ट्रेस अपेरेंटली वॉजेंट इनफ क्रिकेट के दौरान, पर दे इन्वेंटेड सुपर ओवर. एंड कैन आई जस्ट से वेदर इट्स क्रिकेट, ऑफिस मीटिंग या फैमिली लूडो गैदरिंग, लूजिंग ग्रेसफुली डिजर्व्स मोर ट्रॉफीज, यू नो. मतलब मिलना चाहिए ना कुछ हार के जीतने वाले को जिसने अपना कूल एंड कंपोजर मेंटेन कर रखा था. सो आज का मिर्ची लाइफ लेसन यही है कि टेक द विन विथ ह्यूमिलिटी, टेक द लॉस विथ डिग्निटी एंड टेक स्क्रीन शॉट्स व्हेन नेसेसरी. Get it? This is Priscilla on Mirchi Mornings. Thank you for spending your mornings with me, laughing, listening and occasionally pretending to work. And agar iske alawa you want to come and hang out with me online, social media par mera handle hai Mirchi Pris everywhere, like Instagram, X, everywhere. And saath saath mein WhatsApp par mera number hai 9033Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: यार बचपन में कैसे 2 रुपए लेकर मैं चिज्जी लेने जा रही हूँ ऐसा कह के घर से निकल जाया करती थी, और 2 रुपए में ही सामान लेकर घर वापस भी लौटाया करती थी। अब जमाने बदल गए यार।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और नहीं तो क्या यार, 2 रुपए लेकर जाते थे तो पता था कि 2 रुपए में क्या आने वाला है और वही चीज लेकर आते थे। आज के टाइम पर तो यार 5,000 भी कहाँ जाते हैं ना, पता ही नहीं लगता। और फिर ऐसा भी लगता है कि अरे यार जो लेना था वो तो लिया ही नहीं, काम की चीज तो कुछ ली नहीं, लेकिन ये 5,000 रुपए कहाँ उड़ गए। और आज ना ये जो EMI के टंटे, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट फलाने ढिमाके, ये सारे चोचलों में जब हम फंस गए ना, मैं आज भी वही दिन याद करती हूँ जब हम चिज्जी लेने से मतलब रखा करते थे कि यार 2 रुपए मिले, 5 रुपए मिले या 10 रुपए मिले, ना उसमें सेविंग्स का पैसा लगता था, ना उसमें EMI जाती थी, ना कोई और पेमेंट करनी होती थी, सिर्फ एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करते थे हम, और वो है अब यार इसमें कौन सी वाली चिज्जी आएगी। चॉकलेट लेनी है, चिप्स लेनी है, कैंडी लेनी है, नटखट लेना है, इलू इलू लेना है, क्या लेना है बोलो तुम। हर एक बजट में आप चिज्जी खरीद सकते थे। आज के टाइम की तरह नहीं है कि अगर आपको कुछ लेना है तो 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा कि यार इतने पैसे बचेंगे तो आप वो चीज ले पाओगे। हाँ, लाइफ वॉज वेरी सिंपल बैक देन यार, नहीं क्या। और कहते हैं कि सिंपलिसिटी इज ब्यूटी, तभी तो बचपन हमें इतना खूबसूरत लगता है। चलो फिर उसी जमाने में चलते हैं, यानी कि 90s के जमाने में। मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डाल रही हूँ मैं, और आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virpa, la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या मत तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्रो फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
2: तो
3: नहीं होते,
2: थोड़ी ना
3: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे, तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: अब गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई साहब, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है, आप फालतू
4: हैं। सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
10: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
11: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
10: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
12: अभी न जाओ छोड़ कर।
11: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
13: અમેરિકામાં શ્રેષ્ઠ ઇન્ડોર અને આઉટડોર કેટરિંગ સેવા, એન્ગેજમેન્ટ, લગ્ન, બેબી શાવર, જન્મદિવસ પાર્ટી અને એડલ્ટ ડે કેર, તમારા સ્થળ પર લાઇવ કુકિંગની સુવિધા, અમે અમેરિકામાં તાજું ફરસાન અને મીઠાઈ બનાવીએ છીએ, અમે ન્યૂ જર્સી અને ન્યૂ યોર્કમાં ડિલિવરી સાથે ટિફિન સેવા પણ આપીએ છીએ, આજે જ બોમ્બે એક્સપ્રેસ અને વૈષ્ણવ કેટરર્સને કોલ કરો એટ 732-986-6241 ઓર વિઝિટ 2849 વુડબ્રિજ એવન્યુ, એડિસન, ન્યૂ જર્સી।
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
15: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है।
14: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 90s बॉलीवुड की फिल्मों के टाइटल्स सिर्फ टाइटल्स नहीं थे बॉस, पूरे एसेज हुआ करते थे।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And those were the days जब fashion ही लंबी लंबी movies के titles का होता था। And no one dared to release a movie जिसका one word नाम हो। और यही वो movies हैं जो आज भी हमें डमशराज खेलने में बड़ा मदद करती है और हमारी टीम को जिताती है। And I've decided कि मैं आपको कुछ ऐसी ही फिल्मों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आज, जिनके नाम या तो हमने डमशराज में सुने हैं, नहीं तो आगे ये नाम हमें डमशराज जीतने में मदद करेंगे। जिस देश में गंगा रहता है, ये मूवी याद है आपको? मुझे डेफिनेटली याद है। गोविंदा, सोनाली बेंद्रे और रिंकी खन्ना की ये मूवी, वो दौर था जब गोविंदा की फिल्में फ्लॉप हो रही थी और ये फिल्म इस लिस्ट में एक और नाम था। ये महेश मांजरेकर डायरेक्टेड पहली कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन शुक्र है इसके फ्लॉप होने के बावजूद उन्होंने कॉमेडी फिल्म्स बनाने का आइडिया ड्रॉप नहीं किया और ऐसे ही ये फिल्म हमारे डमशराज की लिस्ट में शामिल हो गई। और अगर अभी तक आपने इस फिल्म का इस्तेमाल नहीं किया है ना, तो मैं तो कहती हूँ अगली बार के लिए डेफिनेटली याद रखना इस फिल्म का नाम। आओ चलो इसी बात पर आपको बिग बॉस, ओहो आई मीन यस बॉस का ये प्यारा सा गाना सुनाती हूँ, कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: परेशानी। जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें, वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: It's 11:30 AM. Mirchi time check.
3: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Diamond jewelry ki first choice. RK Jewels. Best quality, best price.
4: Jai Gurudev. Gayatri Chetna Center. Piscataway ki or se. Aap aur aapke parivar ko Guru Purnima evam Rudrabhishek Mahotsav mein snehapurna amantran. Shanivar 1 August ko subah 10 baje Shivji Rudrabhishek aur sham 5 baje Virat Deep Yagya. Ravivar 2 August ko subah 10 baje 251 kundiya Gayatri Mahayagya. Shanti Kunj. Haridwar ke Pujya Santon द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव।
5: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
6: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
7: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu। Vishal Mishra, live in New Jersey, Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
11: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
5: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सोनिटेस, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: आपने अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है इस फिल्म का नाम तो सुना ही होगा।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल हम मिलेनियल्स ने जब जब डमशराज खेला है इस फिल्म के नाम का इस्तेमाल डेफिनेटली किया है। और जो सवाल हम पूछते आ रहे हैं डमशराज में वो यही है कि ये फिल्म एग्जिस्ट भी करती है क्या। एंड द जवाब इज यस करती है। और मैंने सोचा है कि मैं आपको डमशराज की वो फिल्मों के टाइटल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आज जिन पर आज तक हमने सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाया है। दिस फिल्म स्टार्ड नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी एंड स्मिता पाटिल। और ये एक आर्ट फिल्म थी जिसमें बात नसीर साहब के कैरेक्टर के गुस्से को लेकर की जा रही थी, जो गुस्सा करते करते अपने गुस्से की वजह से समझता चला जाता है और उसे ये पता लगता जाता है कि जो गुस्सा वो पहले गरीबों पर करता था वो उसे डिजर्व नहीं करते, डिजर्व तो सिर्फ अमीर करते हैं। और इसी चक्कर में अल्बर्ट पिंटो के जो गुस्से का मकसद और मतलब था वो बदल जाता है, लेकिन गुस्सा वो चलता चला जाता है। इसी के साथ बॉस अब मदहोश होने का टाइम आ गया है क्योंकि कमिंग अप कुमार सानू की आवाज में ये गाना फ्रॉम द फिल्म कभी हाँ कभी ना। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिस्तर बंद, ये याद है आपको कि ऐसे भी कोई चीज हुआ करती थी हमारी लाइफ में कभी?
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और 90s में सर्दियों में इंडियन रेलवे से ट्रैवल करने का मतलब पूरे जिंग बैंग के साथ ट्रैवल करना, कंबल, तकिया, चादर, पतली पतली रजाइयां, और ये सब बंद होता था एक आर्मी ग्रीन कलर के कैनवस वाले कवर में, जिसे हम बिस्तर बंद कहा करते थे। ये सामान ना सबके ट्रैवल का हिस्सा हुआ करता था। आई रिमेम्बर सर्दियों में जब हम नानी के घर जाते थे ना, तो हमारे रूम के एक कोने में इसे भी जगह देनी पड़ती थी, और ये कमरे में बीन बैग का काम किया करता था। कट टू आज का ट्रैवल, विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वी सी पीपल ट्रैवलिंग कम से कम सामान के साथ, एकदम हैसल फ्री। आज का रेलवे तो इतनी तरक्की कर चुका है कि खाना हो या बिस्तर, हर चीज मिल जाएगी आपको ट्रेन के अंदर। यार, घर से लेकर आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यार, सर्दियों में स्लीपर में ट्रैवल करना बड़ा बर्फीला हुआ करता था, नहीं? स्पेशली फॉर दोस जो खिड़की की सीट पर सोते थे। भाई, शटर के नीचे एक हल्की सी लाइन जहाँ से हवा घुस घुस कर आती थी, ये वही थी जिससे एक ही रात में हमारी नाक जम जाती थी। लेकिन एक बात तो है यार, आज भले ही हम ट्रेन्स और फ्लाइट्स में पहले से बहुत ही लाइट ट्रैवल करते हैं, लेकिन इमोशनल बैगेज कुछ ज्यादा कैरी नहीं कर लेते हैं। जरा उसे भी तो कम करें। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ja bana. Burka, burka. Na vid bala burka.
1: Milci, burka.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस कौन सा लगाया? नहीं
3: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब?
3: नहीं कल
2: का फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
10: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
11: पहले भी मैं तुमसे मिला।
12: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नन अदर देन विशाल मिश्रा।
13: विशाल मिश्रा
10: Chetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
9: and SaiUSAInc.com. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com.
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
17: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
16: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab, mirchi kha.
14: Radio Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear हाथों पर लगने वाली चांद वाली मेहंदी.
2: यादों को चिट्ठी.
1: तो हमारी लाइफ में इस बात की निशानी थी कि लाइफ इज सिंपल. जब लाइफ सिंपल हुआ करती थी तो मेहंदी के डिजाइंस भी सिंपल हुआ करते थे. और ये बात भी बड़ी सिंपल थी कि त्योहार हो या शादी, मम्मा लोहे की कढ़ाई में पहले ही मेहंदी भिगो दिया करती थी, फिर सारी लड़कियां लाइन से बैठकर मेहंदी लगवा लिया करती थी. ना इस बात की टेंशन कि मेहंदी वाली आएगी या पूरी पलटन उसके पास जाएगी, और ना इस बात की टेंशन कि कौन सी लड़की कौन सा डिजाइन लगवाएगी. ना ये कॉम्पिटिशन होता था कि तेरी मेहंदी दिखा, तेरी तो ज्यादा अच्छी है और मेरी नहीं. और ना ये सर दर्द होता था कि मेरी मेहंदी के डिजाइन में जी इधर जाली वाला डिजाइन और इधर मोर पंख बनाना. कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, ओनली सिंप्लिसिटी. और तब आसमान में चांद भले ही अधूरा हो लेकिन हमारी मेहंदी में पूरा हुआ करता था. तुम्हें बचपन में चांद का टुकड़ा मानने वाली, आज दिल का टुकड़ा मानती हुई तुम्हारी सारा. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Cassette ke side B ka panchwa gana.
2: Mirchi 90s cassette.
1: जब मूवी के टाइटल में ही सुर है तो गानों में कैसे नहीं होगा। लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना जिसे कंपोज किया है MM की रावनी ने।

और इस गाने के कंपोजर वही हैं जिन्होंने इस गाने की म्यूजिक देने के कई सालों बाद एकेडमी अवार्ड जीता फॉर द सॉन्ग नाटू नाटू। वैसे एक बात बताओ, कभी मोहब्बत में पढ़ के आपने इस गाने के बोल की तरह सुबह का इंतजार किया है क्या? अरे मोहब्बत में रात काली ना की तो क्या किया, व्हेन यू नो कि अगली सुबह ही उस दिन की शुरुआत है जहाँ कई नई यादें बनने का इंतजार कर रही है। इस फील से अगर इस गाने को सुनो ना तो और ज्यादा फील आता है। और अभी हम जाता है। इट्स टाइम फॉर मी टू से हम हराई प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। लेकिन यहाँ के अलावा मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी बाय द नेम मिर्ची सारा। आप अपना ख्याल रखिएगा और फिलहाल के लिए ये गाना आपके लिए आ रहा, स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

पुरानी जीन्स पर आज हम एक बहुत ही स्पेशल म्यूजिक कंपोजर सिंगर की बात करने वाले हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये जो सिंगर है ना, इनकी आवाज में इतनी मासूमियत है कि उस आवाज के ना इसे गाल पकड़ के प्यार से वुगली वुगली ऊश करने का दिल करता है। उस आवाज में इतनी रूहानियत है कि जब सुनते हैं तो कानों से होते हुए रूह में उतर जाती है। ये आवाज है हेमंता मुखोपाध्याय की, या हेमंत मुखर्जी की, या हेमंत कुमार की, या प्यार से जैसे कहते हैं हेमंत दा की आवाज। आपके दिल और जज्बात के ऐसे तार छेड़ जाती है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब ये गाना जो हम सुनने वाले हैं ना, इसे सुन के उस इंसान को भी अनरिक्वाइटेड या अधूरे प्यार का दर्द महसूस हो जाए जिसे किसी से प्यार ही नहीं है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, हेमंत दा के बारे में और करेंगे बात राइट हियर मिर्ची पर।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: मिर्ची
2: नवीद
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ,
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूं फिर मुर्गा बनाऊं। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: हाँ, भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए, फिर मैं बताऊं।
1: ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
1: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है।
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बनाते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
6: पहले भी मैं तुमसे मिला।
7: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
8: Vishal Mishra.
5: Jetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
9: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
10: to aaiye Fashion Queen. Yahan milega Royal Bridal Lehenga Collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
9: Shaadi shopping ka complete destination, Fashion Queen.
10: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
11: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
12: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
11: Renew?
12: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
11: What better way to celebrate than with something timeless?
12: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: Listener MI, back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
0: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
15: ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है। ये माना मेरी जान,

मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और आज हो रही है द लेजेंड हेमंत कुमार की बात। हेमंत दा का जन्म 16 जून 1920 को बनारस में हुआ था। अब तब तो बनारस ही बोलते थे ना। ये उनके नाना नानी का घर था। उनके पापा दादा तो बंगाल के थे, बंगाल में ही उनकी स्कूल की पढ़ाई हुई। लेकिन हेमंत दा जब कॉलेज पहुँचे तब उन्होंने क्या किया, करते हैं ना बात थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
5: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
6: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
7: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
8: શું તમે હેલ્થકેર મેળવવા વિશે ચિંતિત છો? શું તમને ખબર છે કે ન્યૂયોર્ક વ્યક્તિઓ, પરિવારો અને નાના બિઝનેસ માટે ઓછા ભાવમાં હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ આપે છે? એપ્લિકેશનની ચિંતા ન કરો, SACSS એનરોલમેન્ટ સ્પેશિયલિસ્ટ તમને આ પ્રક્રિયામાં મદદ કરશે। અમારો સ્ટાફ વી કરતા વધુ ભાષા બોલે છે અને અમે તમને હેલ્થકેર મેળવવામાં મદદ કરીશું। સાઉથ એશિયન કાઉન્સિલ ફોર સોશિયલ સર્વિસીસને કોલ કરો 718-321-7929 અથવા SACSS ઓફિસમાં રૂબરૂ મુલાકાત લો 14302 45th એવન્યુ ફ્લશિંગ ન્યૂયોર્ક વરહુ માહિતી માટે વિઝિટ કરો www.sacssny.org।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
15: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

महान गायक और कंपोजर हेमंत कुमार की बातें आज हम कर रहे हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो हेमंत दा ने स्कूल की पढ़ाई तो कर ली, उसके बाद इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए उन्होंने जादवपुर में बंगाल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे अब जादवपुर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वो ज्वाइन की। लेकिन जैसे ही ये कॉलेज की पढ़ाई जोर पकड़ने लगी, हेमंत दा की तबीयत खराब होने लगी। फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी थे, लेकिन तन की तबीयत से ज्यादा मन की तबीयत खराब हो रही थी, क्योंकि मन तो म्यूजिक में लगा था ना। 17-18 साल के रहे होंगे हेमंत दा, उन्होंने मन बना लिया कि करियर तो म्यूजिक में ही बनाऊंगा। उनके फादर इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन लड़का तो हाथ से निकल गया था, क्योंकि उसे संगीत की ऊंचाइयों तक जो पहुंचना था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं आज हेमंत कुमार।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिली।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
9: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
0: Purani jeans, charu ke saath, sirf mirchi par.

द लेजेंड कॉल्ड हेमंत कुमार। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हेमंत दा ने म्यूजिक की ट्रेनिंग ली बंगाली म्यूजिशियन शैलेश दत्त गुप्ता से और क्लासिकल म्यूजिक सीखा उस्ताद फैयाज अली खान से। भाई हेमंत दा का पढ़ाई लिखाई में खास दिल नहीं लगता था स्कूल में, क्योंकि उनका दिल तो संगीत में लगा हुआ था ना। स्कूल में ही उनके आर्ट से जुड़े दो लाइफ टाइम दोस्त बन गए थे, सुभाष मुखोपाध्याय जो आगे चलकर एक बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएट बने और संतोष कुमार घोष जो आगे चलकर एक बहुत ही जाने माने राइटर बने। सुभाष मुखोपाध्याय के कनेक्शंस की वजह से हेमंत दा को 13 साल की उम्र में, व्हेन ही वाज जस्ट 13, इमेजिन, उनका पहला सिंगिंग ब्रेक मिला ऑल इंडिया रेडियो में गाने के लिए। ये सफर आगे कहाँ बढ़ा करते हैं ना बात थोड़ी देर के बाद। फिलहाल हेमंत दा का कंपोज किया हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं साहब बीवी गुलाम मूवी से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

बातें हो रही हैं आज उस म्यूजिक कंपोजर, उस सिंगर की जिनकी आवाज को वॉइस ऑफ गॉड भी कहा गया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। द लेजेंड हेमंत कुमार। हेमंत दा की फिल्मी म्यूजिक जर्नी की शुरुआत हुई थी 1940 में, जब उन्होंने एक बंगाली फिल्म के लिए अपना पहला गाना गाया था। द कंपोजर वॉज अगेन अ लेजेंड एसटी बर्मन साहब। और ये प्रोफेशनल लाइफ तो शुरू हो ही गई थी, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी सेट होने की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि इसी दौरान वो अपनी फ्यूचर वाइफ बेला मुखर्जी से मिले। बेला जी भी एक सिंगर थी, इनफैक्ट काफी गानों में हेमंत दा ने बेला जी को मेंटर भी किया। 1945 में दोनों की शादी हुई। उन्होंने एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट की जिसका नाम था हेमंत बेला प्रोडक्शंस, बाद में जिसका नाम बदल के गीतांजलि प्रोडक्शंस रख दिया गया था। इनके दो बच्चे थे, बेटी रानू और बेटे जयंत, जिनकी शादी बाद में एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी से हुई। अच्छा, बैक टू मिड 40s, तो इस सफर में हम सफर तो हेमंत दा को अब मिल गया था, लेकिन आगे अभी उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी ऊंचाई पर पहुंचना था। करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो
2: हेलो सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्र फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते,
1: थोड़ी ना
2: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर, हमें गुब्बारे वाले से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर, काम का टाइम है,
3: आप सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ, कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स। Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: क्या आप हेल्थ केयर हासिल करने को लेकर परेशान हैं? क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क लोग परिवारों और छोटे बिजनेसेस के लिए कम दाम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करता है? एप्लीकेशन की चिंता ना कीजिए, SACSS एनरोलमेंट स्पेशलिस्ट्स आपको पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे। हमारे स्टाफ मेंबर्स 20 से अधिक भाषाएं बोलते हैं और आपको सस्ती हेल्थ केयर दिलाने में मदद करेंगे। साउथ एशियन काउंसिल फॉर सोशल सर्विसेज को कॉल करें 718-321-7929 या SACSS ऑफिस विजिट करें 143-02-45th Ave, फ्लशिंग, न्यूयॉर्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sacssny.org।
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हमारे देश की बहुत बड़ी त्रासदियों में से एक है अर्ली और मिड 40s का बंगाल का अकाल। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस त्रासदी में बंगाल के लाखों लोग भुखमरी, गरीबी, लाचारी, बीमारियों का शिकार हुए। तब बंगाल की एक संस्था IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी काम करती थी और लोगों के हित के लिए भी, उसके दो मेंबर्स ने इस त्रासदी से आहत होकर एक गाना बनाया। ये गाना उन सारे बंगाली गानों से अलग था जो अब तक बंगाल में बनते आए थे। एक खुशहाल गांव को कैसे इस अकाल, इस गरीबी ने बर्बाद कर दिया, ये उस गाने में बहुत संवेदनशीलता के साथ बताया गया। ये गाना बनाया था एक लेजेंड कंपोजर सलिल चौधरी ने और गाया था एक और लेजेंड कंपोजर सिंगर हेमंत कुमार ने। इस गाने ने लोगों के दिल को इतना छुआ कि हेमंत कुमार सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे देश में पॉपुलर हो गए। ये हुआ था 1947 में। तब हेमंत दा बंगाली फिल्मों के गाने तो गा ही रहे थे, इसके बाद वो मुंबई कैसे आए करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
10: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
11: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
10: Renew?
11: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
10: What better way to celebrate than with something timeless?
11: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: Listener MA, back to back gana sunega.
13: Back to back gana sunega.
12: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
14: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

द लेजेंड हेमंत कुमार की जर्नी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो लेट 40s तक हेमंत दा बंगाल में इमेंसली पॉपुलर हो गए थे। इसी दौरान वो डायरेक्टर हेमंत गुप्ता से मिले, जो 1950 के आसपास मुंबई शिफ्ट हो गए। और जब उन्होंने अपनी फिल्म आनंद मठ बनाने की सोची तो उसका म्यूजिक कम्पोज करने के लिए हेमंत दा को बुलाया और 1951 में हेमंत दा भी मुंबई शिफ्ट हो गए। और इस फिल्म का बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ वंदे मातरम, जो लता मंगेशकर जी की आवाज में हेमंत दा ने कंपोज किया था, इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वर्जन्स ऑफ दैट पेट्रियोटिक सॉन्ग। और देशभक्ति के गानों की बात करें तो फिर 1954 में जागृति फिल्म के गाने भी हेमंत दा ने कंपोज किए, जो आज भी हर इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे चलते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या फिर हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इन फिल्मों के साथ एक और फिल्म और उसका आइकॉनिक म्यूजिक था, और उसी के साथ साथ हेमंत दा के गाए हुए गाने भी, जिसने हेमंत दा को हिंदी फिल्मों में भी एक बहुत बड़ा नाम बना दिया। करते हैं उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

द लेजेंड हेमंत कुमार, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो हेमंत दा 1951 में बॉम्बे शिफ्ट हो गए। 1952 में एज म्यूजिक कंपोजर उनकी पहली हिंदी फिल्म आई आनंद मठ, जिसका म्यूजिक इतना ज्यादा नहीं चला। इसके बाद इन्होंने एक दो फिल्मों का म्यूजिक और दिया, वो भी कुछ खास नहीं चला। तब हेमंत दा को लगा कि चलो वापस कलकत्ता चलते हैं, और तब उनको रोका फिल्मिस्तान स्टूडियो, जो तब एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी, उसके वन ऑफ द फाउंडर्स एस मुखर्जी ने। ये एस मुखर्जी वही थे जिन्होंने हेमंत दा को सजेस्ट किया था कि वो हिंदी फिल्मों के लिए अपना नाम हेमंत कुमार रख लें। तो मुखर्जी साहब ने उनको बोला कि भाई ऐसे मत जाओ, एक हिट तो देकर जाओ। और इसके बाद जो इन्होंने म्यूजिक दिया है उसे हिंदी फिल्मों का आइकॉनिक म्यूजिक माना जाता है। इसके म्यूजिक के लिए हेमंत दा को फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड मिला था। ये म्यूजिक था नागिन फिल्म का म्यूजिक, जिसमें वो क्लासिक बीन वाली ट्यून थी। और आपको पता है इसमें हेमंत दा ने साउंड के लिए बीन का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने ये साउंड हारमोनियम और क्लेवायलिन नाम के एक इंस्ट्रूमेंट की साउंड को मिला के बनाया था। आज भी जहां भी ये म्यूजिक चलता है सबके मन डोल जाते हैं, तन डोल जाते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: हेमंत दा कमाल के सिंगर थे और उससे भी ज्यादा कमाल के म्यूजिक कंपोजर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनकी ना एक और स्पेशलिटी थी कि वो टेक्निकली बहुत साउंड थे, मतलब उस टाइम पे 50s-60s में जब म्यूजिक में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हेमंत दा को पता रहता था कि किस गाने के लिए माइक कितना दूर रखना है या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज करना है। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नागिन फिल्म के मन डोले मेरा तन डोले में वो जो आइकॉनिक बीन की ट्यून है, उसमें एक्चुअली उन्होंने बीन का इस्तेमाल नहीं किया है, हारमोनियम और क्लेवालन नाम के इंस्ट्रूमेंट की साउंड को मिक्स करके वो बीन की साउंड बनाई गई है। एंड उसके बाद यू नो फिल्म्स लाइक 20 साल बाद, साहेब बीबी और गुलाम, अनुपमा एंड खामोशी, खामोशी का म्यूजिक उफ तौबा। खास करके जो गाना हम सुनेंगे इसमें नाव से टकराती पानी की लहरों की आवाज, जिस तरह से कोरस का इस्तेमाल किया गया है, या बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर के म्यूजिक की जो छाप इनके म्यूजिक में सुनने को मिलती है, दैट इज सो ब्यूटिफुल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।
1: Oh, Sean.

0: पुरानी जीन्स विद चारु ओनली ऑन मिर्ची
1: हेलो।
2: दिमाग खराब कर रखा है, रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है, क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिया यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर बेहतरीन, आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लगाया नहीं
2: क्या, कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब नहीं।
2: कल को अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार, शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
1: अरे
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
1: हैं। सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी, एल्बम ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है नहीं,
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए,
2: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए।
0: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु देव।
7: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
8: पहले भी मैं तुमसे मिला।
9: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा। विशाल
7: मिश्रा अमित जेटली ऑफ साई USA इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ। विशाल मिश्रा पागलपन टूर फ्राइडे June 26th हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी। बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Tera kya hoga, Kalia?
13: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
12: Ab, mirchi kha.
14: Radio Mirchi, it's hot.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ना कैदी तो कैदी, नहीं चाहिए तुम्हारा अवार्ड, पहले क्यों नहीं दिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर मैं जब ऐसा बोल रही हूँ तो शायद थोड़ा एटीट्यूड साउंड कर रहा होगा, लेकिन हेमंत दा ने जब ऐसा किया था तो वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। जी मैं बात कर रही हूँ द लेजेंड कंपोजर सिंगर हेमंत कुमार की। उनको उनके गानों के लिए, म्यूजिक के लिए बहुत अवार्ड्स मिले। इनफैक्ट 1970 में और 1986 में उनको दो बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिल चुका है। लेकिन 1971 में पद्मश्री और 1987 में पद्म भूषण जैसे सम्मान लेने से हेमंत कुमार ने मना कर दिया। हेमंत दा को ऐसा लगा कि ये सम्मान उनको बहुत देरी से मिला, इतने साल उनके काम को नजरअंदाज किया गया, उनके जूनियर्स, उनके कंटेम्प्रेरीज को बहुत पहले ये सम्मान मिल चुका था, तो बस सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आ गई, सम्मान लेने से मना कर दिया। पर आई थिंक सबसे बड़ा सम्मान जो उनके काम को मिला है और आज तक मिल रहा है वो ये कि जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन लोग उनका म्यूजिक, उनके गाने इतने पसंद करते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.
1: It's 3:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Mirchi yoga class. Mirchi yoga class.
3: Pareshani. जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे. पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे. एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें. वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें. करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान. तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो.
4: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Are you worried about accessing healthcare? Did you know that New York offers affordable health insurance for individuals, families and small businesses? Do not worry about the application. South Asian Council for Social Services enrollment specialists will help you with the process. Our staff speaks over 20 languages and we will help you get affordable healthcare. Call the South Asian Council for Social Services at 718-321-7929 or visit the SACSS office in person at 14302 45th Avenue in Flushing, New York. For more information, visit www.sacssny.org.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
9: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
10: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
11: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
10: Renew?
11: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
10: What better way to celebrate than with something timeless?
11: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: एक लेजेंड ने दूसरे लेजेंड के बारे में क्या कहा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लता मंगेशकर जी हेमंत कुमार जी के बारे में ऐसा कहती थी कि हेमंत कुमार जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई संत साधु है और अपनी भक्ति के गीत गा रहा है, इतने डिवोशन के साथ। एक बहुत पुराने इंटरव्यू में सुनिए लता जी ने हेमंत दा के म्यूजिक कॉम्पोजिशन के बारे में क्या शेयर किया था।
1: हेमंत दा इसमें विश्वास करते थे कि सिंपल ट्यून हो, बोल अच्छे हो, और जब गाना रिकॉर्ड होता था तो उनके म्यूजिक में भी एक बड़ा सिंपल ये रहता था, बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा या इसमें वो विश्वास नहीं करते थे। और खुद गाते थे अच्छा, तो जो खुद गाता है वो जब गाना बनाता है तो उसका एक अलग ही रंग हो जाता है,
0: और ऐसे रंग जो पता नहीं कितने सालों से दुनिया को रंगीन बना रहे हैं। इन दिग्गजों का कोई भी पुराना गाना आप उठा के सुन लो, क्या ही कमाल होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
8: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
7: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
9: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

दोस्तों ट्यूसडे का काम होता है बस लाइफ को थोड़ा सेटल कर देना। मंडे ने जो झटका दिया, ट्यूसडे आके बोलता है कि ठीक है भाई अब सांस ले लो। शाम शाम का लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आज का दिन ड्रामेटिक नहीं था तो ऑनेस्टली दैट इटसेल्फ इज अ विन, क्योंकि ट्यूसडे ना एक्साइटमेंट के लिए नहीं, बैलेंस के लिए होता है। थोड़ा काम, थोड़ा रूटीन, थोड़ा नॉर्मल सी। तो आप भी बताओ दोस्तों, आज का दिन हैवी था या मैनेजेबल? डीएम ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और आपकी ट्यूसडे की वाइब शेयर करो। और आपकी ट्यूसडे की वाइब को मैच करने वाला ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La
1: firma la burga. Milci, burga. Milci.
2: Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए, फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
1: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। मैं रेडियो मिर्ची पे।
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
6: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
8: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
9: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
8: Renew?
9: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
8: What better way to celebrate than with something timeless?
9: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
0: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बॉलीवुड म्यूजिक का डिबेट कभी खत्म ही नहीं होता। ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज बोल्ड। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और पुराने गाने ना यार टाइम लेते थे दिल में बसने के लिए, लेकिन नए गाने इंस्टेंट वाइब देते हैं। पहले लिरिक्स डायरी जैसे लगते थे, लेकिन आज बीट्स प्लेलिस्ट फ्रेंडली हो गए। दोनों का ना अपना ही अलग चाव है। एक मेमोरी बनाता है, लेकिन दूसरा मोमेंट बनाता है। और शायद इसी बैलेंस में बॉलीवुड म्यूजिक सरवाइव कर रहा है। वैसे आप भी बताओ दोस्तों, आपका मूड आज किस तरफ है, रेट्रो या रीसेंट? डीएम मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। फिलहाल मेरा मूड क्या कहता है वो तो आप अभी सुनेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस्य बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
2: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
3: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: It's 4:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Mirchi yoga class. Mirchi yoga class.
3: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
4: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
5: हाय गाइस, दिस इज शर्वरी एंड यू आर हियरिंग मी ऑन श्याम शानदार विथ मिर्ची सिद्धि।
6: श्याम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
7: Hi, this is Vedang Raina and you're listening to me on Shyam Shandar Live with Mirchi Siddhi.
8: दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही मूड हल्का कर देते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और ऐसा ही फील आ रहा है एक नए गाने से, मस्करा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। बस इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने और गाने को आवाज दी है वेदांग रैना और निलंजना घोष ने। ऑनेस्टली, इस गाने में ना कोई हैवी हार्ट ब्रेक, ना कोई इंटेंस ड्रामा है, इसका चार्म ही उसकी प्लेफुलनेस है, थोड़ी सी शरारत, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला कॉन्फिडेंस और वो फीलिंग जब किसी की एक स्माइल ना पूरे दिन को अमेजिंग बना देती है। और जी हाँ, मस्करा टाइटल भी बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्योंकि यार गाना सुनते वक्त लगता है कि जैसे कि किसी की आंखों की तारीफ हो रही हो, लेकिन वो कॉलेज वाली टीजिंग, वो नजरों वाली कॉन्वर्जेशन और वो एक्साइटमेंट जब किसी को देखते ही ना मूड ऑटोमेटिकली बन जाए, ना कि कोई पोएटिक हैवी लाइन से। ये जो म्यूजिक है वो रहमान सर का है, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम रहमान सर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ग्रैंड मेलोडीज या सोलफुल ट्रैक्स याद आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने गाने को बहुत ही लाइट और ब्रीजी रखा है। इरशाद कामिल के लिरिक्स और भी ज़्यादा मस्ती और प्यारा बना देते हैं इस गाने को। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि गाना खुद को बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। तो आजकल के इतने सारे रोमांटिक्स ट्रैक है जो यार इमोशंस में बिल्कुल डुबा देते, लेकिन मस्करा में एक अलग ही फ्रेशनेस है। ऐसा गाना जो ड्राइव पर भी चले, फ्रेंड्स के साथ भी चले और रैंडम स्माइल भी दे जाए। तो ऑनेस्टली दोस्तों, कभी कभी ना प्लेलिस्ट को भी ऐसे गाने की जरूरत होती है जो दिल को हैवी नहीं, हैप्पी कर दे। तो आज आपके लिए ये गाना बजाते हैं, लेकिन आप भी मुझे बताइए विच इज दैट सॉन्ग जिसको सुनते ही आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और बजाते हैं वो गाने यहाँ पर। फिलहाल आपके लिए मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, जब बात हो डांस की, कल्चर की और अपने रूट्स को सेलिब्रेट करने की, तो कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही कहानी की जो 30 साल पहले इज़लिन न्यू जर्सी में शुरू हुई थी और आज हजारों स्टूडेंट्स के सपनों में चमक रही है। चमकते सितारे 2026 की इस खास जर्नी के बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं फ्रॉम इंडियानिका एकेडमी। और दोस्तों, ना सिर्फ वो हमें चमकते सितारे के बारे में बताएंगे, लेकिन बताएंगे एक ऐसी बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन के बारे में जिन्होंने आज भी न्यू जर्सी में कल्चर, डांस और कम्युनिटी को एक साथ जोड़े रखा है। तो कहीं ना जाइए, बने रहे मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और याद है बॉलीवुड का वो सुनहरा दौर जब गाने ना सिर्फ हिट नहीं होते थे, यादों का हिस्सा बन जाते थे। और तब आया एक ऐसा गाना जो आज भी हर लड़की तैयार होते वक्त कभी ना कभी गुनगुनाती है। जी हाँ यार, एक ऐसा गाना जब सुनते ही ना मतलब मन करता है कि हम सजने संवरने लगे।
1: सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए।
0: और उस गाने के पीछे जो चेहरा था, जो अदा थी, जो नजाकत थी, वो थी पद्मा खन्ना जी की। फिर आया एक और गाना।

0: और बॉलीवुड को मिल गई अपनी डांसिंग क्वीन। वाराणसी की कथक परंपरा से निकली एक कलाकार जिन्होंने क्लासिकल डांस की खूबसूरती को बॉलीवुड के पर्दे के पीछे तक पहुंचाया, 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, उस दौर के सबसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की और अपनी मुस्कान, एक्सप्रेशन और डांस से ना एक अलग ही पहचान बना ली। लेकिन दोस्तों, हर कलाकार ना एक वक्त के बाद तालियों से ज्यादा कुछ और चाहता है, एक विरासत। और पद्मा खन्ना जी की विरासत किसी फिल्म के एंड क्रेडिट्स में नहीं लिखी गई थी, वो लिखी गई थी यहाँ न्यू जर्सी में। 30 साल पहले उन्होंने एक सपना देखा था कि यार, परदेश में पलने वाले जो हमारे बच्चे हैं, अपनी संस्कृति को सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि अपने कदमों पे, अपने सुरों में, अपनी पहचान में बनाए। और उस सपने का नाम बना इंडियानिका एकेडमी। और आज 30 साल बाद वो एकेडमी सिर्फ डांस नहीं सिखाती, वो जनरेशंस को उनकी जड़ों से जोड़ती है। और इसी खूबसूरत सफर को सेलिब्रेट करने आ रहा है आपके लिए, न्यू जर्सी के लिए चमकते सितारे 2026 इंडियानिका एकेडमी का 30th एनुअल कल्चरल एंड टैलेंट ग्रैंड शो। और इस खास सेलिब्रेशन के बारे में और भी बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं अक्षर सिदाना फ्रॉम इंडियानिका एकेडमी। नमस्ते अक्षर जी, एंड वेलकम टू शाम शानदार।
1: थैंक यू सुधी, नमस्ते टू एवरीवन, नमस्ते टू यू एज वेल। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट योर इंट्रोडक्शन एंड द वे यू इंट्रोड्यूस मॉम।
0: देखिए, पद्मा जी की विरासत यहाँ पर न्यू जर्सी में 30 सालों से है, एंड शी स्टार्टेड इंडियानिका एकेडमी विद अ विजन। और मुझे इसलिए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है आपसे बात करने में कि जब पद्मा जी ने ये एकेडमी शुरू की थी, उनका जो विजन था, उस विजन को ध्यान में रखते हुए आप जब ये सब सोचते हो, आप पीछे मुड़ के देखते हो, क्या लगता है किस बात से वो सबसे ज्यादा प्राउड है?
1: खैर, ये आपने जो सवाल पूछा है, ये हमारे नाम में ही जवाब है। बिकॉज जब हमने ये एकेडमी शुरू की, मेरी मम्मी ने और मेरे पिताजी ने, जगदीश सिदाना जी ने, तो उनका एक ही विजन था कि हम अमेरिका को इंडियन करके छोड़ेंगे, इसलिए नाम था इंडियन अमेरिका। तो जुड़ के हमने बनाया इंडियानिका, एंड दैट इज द रीजन वी कॉल्ड आवर एकेडमी इंडियानिका, कि हम अमेरिका में इंडियन कल्चर को इस तरह फैला दें कि एक इंडियन हेरिटेज के बच्चे को कहीं पे भी ये झिझक ना हो कि हम बोल सकें पूरे प्राइड के साथ, पूरा सीना ठोक के कि हम इंडियन हैं। तो इसलिए हमने नाम रखा इंडियानिका, और वहां से जो विजन शुरू हुआ वो ऊपर वाले की कृपा से और माँ सरस्वती की देन से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और ऑब्वियसली जो हमारे स्टूडेंट्स इतने सालों तक हमारे साथ जुड़े रहे, जो फैमिलीज जिनको हम आज इंडियानिका फैमिली बुलाते हैं, दे हैव सपोर्टेड अस। और जिस तरह से उन्होंने हमें सराहा है, प्यार दिया है, और हमारे जो ट्रस्टीज हैं, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ शब्दों में कि कितनी खूबसूरत जर्नी रही है और कितना अच्छा साथ रहा है रेडियो मिर्ची के लिस्टर्स का भी और यहाँ पूरी कम्युनिटी के साथ साथ।
0: क्या खूब बात है। देखिए, पद्मा जी की तो इतनी सारी विरासत है फिल्म इंडस्ट्री में, देखिए यहाँ पर भी न्यू जर्सी में देखिए, क्योंकि उनका जो डांस के साथ गहरा रिश्ता रहा है, और शायद इसीलिए इंडियानिका टीचर्स एवरीथिंग फ्रॉम कथक टू बॉलीवुड टू हिप हॉप एंड भांगड़ा। तो आप हमें बताइए कि हाउ डू यू कीप इंडियन क्लासिकल आर्ट अलाइव वाइल स्टिल मेकिंग देम एक्साइटिंग आज के बच्चों के लिए, आज की जनरेशन के लिए?
1: सिद्धि, क्या है ना, इसमें मैं बहुत कॉमन सा एग्जांपल दूंगा कि आप एक टाइम के बाद ना आप फास्ट फूड खाते खाते थक जाओगे, लेकिन कभी भी घर की खिचड़ी जो है ना वो आपको कभी परेशान नहीं करेगी। तो क्लासिकल डांस जो है वो एक ऐसी चीज है जो थोड़े से समय के साथ, थोड़ा प्यार के साथ, उसको अगर जायका लेके, फ्लेवर लेके, उसको सेवर करके, अगर आप उसको एंजॉय करके आप सीखना शुरू करें तो आप कभी उसको छोड़ नहीं पाते। तो क्लासिकल डांस, क्लासिकल आर्ट्स किसी भी फील्ड में हो, वो एक ऐसी चीज है जिसको, जिसका मजा जो है वो उसको याद करने में है, उसको प्रैक्टिस करने में है, वो इसको अपने बॉडी के अंदर, अपने स्पिरिट के अंदर ढालने में है, और उसमें समय लगता है, और वो समय जो है वो सिर्फ एक प्यार से आता है। तो जो जो जो बच्चे, जो फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर से, अपनी सभ्यता से इतना प्यार करते हैं कि वो पेशेंटली उस चीज को इंजॉय करते हैं, उस चीज को समझते हैं, उसको सराहते हैं, उसको एक तरह से प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट देते हैं। सो फॉर अस इट्स अ ब्लेसिंग दैट वी फाउंड दीज फैमिलीज, वी फाउंड द पीपल हु ट्रूली वॉन्ट टू इंजॉय इंडियन कल्चर, टू लिव इंडियन कल्चर एंड बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज।
0: सच अ ब्यूटिफुल थिंग। वो कहते हैं ना, ट्रेडिशन और इनोवेशन का बहुत ही प्यारा संगम, लेकिन संगम सिर्फ ट्रेडिशन और इनोवेशन का ही नहीं, कथक बॉलीवुड हिप हॉप का ही नहीं, लोकेशन का भी है। मतलब जिलिन न्यू जर्सी से लेकर लिंकन सेंटर तक, डिज्नी पेरिस एंड लंडन ओलंपिक्स तक भी आपका खूबसूरत सफर रहा है। प्लीज हमें बताइए कि इंडियानिका इतने लेवल ऑफ एक्सेलेंस तक कैसे पहुंची?
1: ये लेवल ऑफ एक्सेलेंस मैं सिर्फ इतना कहूंगा, माँ का आशीर्वाद है। मेरी माँ का जो पद्मा खन्ना जी जिनको आप जानते हैं और सरस्वती माँ जिन्होंने हमें इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि हम अपनी सभ्यता को वहां तक पहुंचा सके और मेहनत करने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये शिक्षा जो है मेरी माँ से मुझे मिली है। आप अगर आप थोड़ा सा भी उनके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शी वॉज इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स और यहाँ आने के बाद भी उन्होंने 30 साल अपने जीवन के इसमें लगाए हैं। तो आप एक तरह से देखिए एक जीवन में उन्होंने 2 करियर्स को एस्टेब्लिश करके सक्सेस पा ली और लोग एक को नहीं कर पाते कभी कभार। एंड शी डिड 2 करियर्स इन 1 लाइफ टाइम। सो मेहनत में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, बस माँ की कृपा थी और ऊपर वाले का हाथ था हमारे सर पे, आज भी है और उसके लिए हम हमेशा हमेशा हमेशा शुक्रगुजार हैं। वी आर ऑलवेज इन डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ द ऑलमाइटी। एंड द ब्यूटिफुल थिंग इज यू नो व्हेन यू हैव वन आर्टिस्ट नेक्स्ट टू यू दैट ट्रूली अप्रिशिएट्स आर्ट, मोर पीपल ज्वाइन। वो एक अपने आप बोलते हैं ना, हम चलते गए और कारवा बनता गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारा सौभाग्य है कि पद्मा जी जैसे आर्टिस्ट, पद्मा जी जैसे गुरु यहाँ के बच्चों को मिलती है। स्पेशली कितने सारे गाने, कितनी सारी यादें हैं फिल्म इंडस्ट्री की उनकी, फिर चाहे वो सजना है मुझे सजना के लिए इतने ब्यूटिफुल सॉन्ग हो या हुस्न के लाखों रंग हो, इतने खूबसूरत गाने हैं। तो दोस्तों ये गाने तो आपके लिए मैं बजाने ही वाली हूँ, लेकिन आज बात इनकी भी करेंगे कि चमकते सितारे 2026 जो हमारे लिए आ रहा है, ये क्या स्पेशल है, मतलब सैटरडे को क्या होने वाला है, क्योंकि कहा जाता है दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वन इन इंडियानिका हिस्ट्री।
1: एब्सोल्युटली, दिस सैटरडे इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ऑब्वियसली कथक तो होगा ही, बॉलीवुड भी होगा, उसमें हमारे जो अलमनाई हैं जो 30 सालों से जिनको हम सिखा रहे हैं, जो यू नो ग्रेजुएट हो गए अपनी लाइफ में, उनको आगे बढ़ना पड़ा, एंड दे आर कमिंग बैक एंड दे गिविंग अ ट्रिब्यूट टू मॉम। देयर आर सम वंडरफुल सरप्राइजेस, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल ऑल ऑफ देम। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत कोलैबोरेशन कह लीजिए आर्टिस्ट का और अलमनाई का और हमारे परफॉर्मर्स, हमारे बच्चों का, I think it's going to be a real treat for everyone in New Jersey. I think everyone should attend, and especially to the radios, you know, Radio Mirchi listeners. I want to do something special for them. So, Siddhi, you tell me.
0: तो देखिए रेडियो मिर्ची के लिसनर्स तो बहुत ही ज्यादा उत्सुक होते हैं, डांस प्रेमी हैं, म्यूजिक के प्रेमी हैं, तो आप हमें बताइए कि पहले तो हमें कहाँ जाके टिकट बुक करनी है।
1: एब्सोल्युटली, indianicaacademy.com, वहां सीधा होम पेज पे जाएंगे, वहां पे बाय टिकट्स का लिंक है, आप टिकट ले लीजिए। एंड स्पेशली फॉर द लिसनर्स ऑफ रेडियो मिर्ची, जस्ट वंस यू आर एट चेकआउट, पुट इन द कूपन कोड मिर्ची 2026, MIRCHI 2026, एंड ऑटोमेटिकली योर टिकट्स विल बी डिस्काउंटेड बाय 30%।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों मैं फिर एक बार बता दूं आपको, चमकते सितारे 2026 30th एनुअल कल्चरल एंड टैलेंट ग्रैंड शो आ रहा है सारे डांस प्रेमियों के लिए, सारे आर्ट प्रेमियों के लिए, सारे कथक प्रेमियों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक डांस शो नहीं है, ये 30 साल की मेहनत, पैशन और कल्चर का सेलिब्रेशन है। सोचिए 30 साल पहले पद्मा खन्ना जी ने जो सपना देखा था वो आज सिर्फ सपना जिंदा ही नहीं है, इट्स रॉकिंग द स्टेज, क्योंकि हर परफॉर्मेंस के पीछे महीनों की हार्डवर्क है, हर स्टूडेंट के पीछे एक फैमिली का सपोर्ट है और हर डांस के पीछे एक कहानी जरूर है। तो दोस्तों इस कहानी को महसूस करने के लिए, इस कम्युनिटी के सेलिब्रेशन को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए जरूर जुड़ना दिस सैटरडे June 20th। अपनी फैमिली के साथ जरूर आइए और देखिए कैसे यार न्यू जर्सी के बच्चे, अपने नेबरहुड के बच्चे अपनी टैलेंट और कल्चर को एक ही स्टेज पर सेलिब्रेट कर रहे हैं विद दिस ब्यूटिफुल फैमिली ऑफ चमकते सितारे 2026, विद दिस ब्यूटिफुल फैमिली ऑफ इंडियानिका एट देयर 30th एनुअल कल्चरल एंड टैलेंट ग्रैंड शो। आज ही विजिट कीजिए indianicaacademy.com। और मिर्ची लिसनर्स के लिए, जैसे कि हमारे जो बहुत ही खास मेहमान है आज के, जो कि पद्मा जी के ही बेटे हैं, तो दोस्तों देखिए हमारे जो मेहमान है इन्होंने हमारे लिए बहुत ही स्पेशल, क्या बोलते, डील या बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट की है। आपको बस यूज करना है मिर्ची 2026 का कूपन कोड और आपको मिलेगा एक स्पेशल डिस्काउंट। तो दोस्तों जल्दी से विजिट कीजिए indianicaacademy.com। एंड वंस अगेन थैंक यू अक्षर जी, पहले तो हमें पद्मा जी के बारे में इतनी सारी चीजें बताने के लिए और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर पूछूंगी आपसे। देखिए पद्मा जी ने इतने सारे गानों पे डांस किया है, इतने सारे यू नो उनके मेमोरेबल यादें रही है, ऐसा कौन सा गाना है जो हमेशा वो गुनगुनाती है आपके लिए या घर में, या उस पर डांस करना उन्हें बहुत ही पसंद है?
1: वो एक्चुअली खुद का गाना गुनगुनाती नहीं है, वो गुनगुनाती है गाने उन लोगों के जिनको देख के वो इंस्पायर हुई थी, उनके गुरु श्री गोपी कृष्ण जी, और उन्होंने झनक झनक पायल बाजे में बहुत खूबसूरत गाने किए हैं, और जो जिनसे वो इंस्पायर हुई है, मीना कुमारी जी, दिलीप कुमार जी, वैजयंती माला जी, जो कितने हमें हमारे इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ट्स रह चुके हैं, पीपल हु हैव रियली हैव बिकम पिलर्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंड शी इज ऑलवेज इंस्पायर्ड, यू नो, बाय द पीपल हु केम बिफोर हर, बाय हर गुरुज, एंड आई थिंक दैट इज वॉट शी वॉन्ट्स टू इंस्टिल इन एवरीबडी, इन ऑल द स्टूडेंट्स दैट शी मीट्स, दैट आप जहां जाएं अपनी सभ्यता, अपने कल्चर, अपनी कला को साथ लेके जाएं और गर्व से आप खड़े हों और अपने अपने कल्चर और अपने कला के प्रति कभी भी आपको ये ना फील हो कि हमारे पास कोई गुरु या कोई इंस्पिरेशन नहीं है।
0: थैंक यू सो मच अक्षर जी, इतनी प्यारी बात हमारे सारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए।
1: Thank you, Siddhi. Thank you very much. Thank you to all the listeners of Radio Mirchi.
0: And once again, my dear friends, dekhiye Chamakte Sitare 2026 30th Annual Cultural and Talent Grand Show aa raha hai New Jersey mein Saturday, yani June 20th ko 4 PM onwards, Colonia High School, New Jersey mein. Tickets aapko mil jayenge indianicaacademy.com aur Mirchi listeners ke liye coupon code Mirchi 2026 is going to be 30 years of legacy of Padma Khanna. One unforgettable evening. To hum milenge aapke saath wahan. तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची राइट हियर।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka.
1: Milci, burka.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस कौन सा लगाया नहीं?
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब
3: नहीं दी दी
2: मैं
3: कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार।
2: गायब हो जाएगी
3: शेरवानी, तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहु उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है नहीं।
2: दिखाइए
3: दिखाइए आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
2: कहाँ होता है बताइए।
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो में।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: ये पटा।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
10: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
9: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
11: अभी न जाओ छोड़ कर।
10: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
12: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
15: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
17: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
18: पहले भी मैं तुमसे
19: मिला। Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
4: Vishal Mishra.
2: Chetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
14: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
6: दोस्तों कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे लिए कोई अबाव एंड बियॉन्ड जाए, शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और सोचिए कि हम जिम ज्वाइन करें तो यार ट्रेनर सिर्फ एक्सरसाइज ही ना बताए बल्कि पोस्चर भी करेक्ट करे, प्रोग्रेस भी चेक करे और इंजरी होने से पहले ही रोक ले। यार कितना अच्छा लगेगा कि ऐसे अबाव एंड बियॉन्ड सभी अपने काम में जाए, क्योंकि यार बड़े बड़े डिसीजन जैसे कि होम बाइंग भी एक ऐसी ही चीज होती है जहां सिर्फ लोन अप्रूवल नहीं होता, राइट गाइडेंस, राइट प्लानिंग और वो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होता है जो हमें लॉन्ग टर्म में एक सही डिसीजन लेने में मदद करें। और इसी एक्स्ट्रा माइल के बारे में आज बात करने वाले हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
18: गुड इवनिंग मिचेल, दिस इज योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। होप यू ऑल हैड अ गुड डे एट वर्क। व्हाट अ प्लेजेंट डे आउट देयर एंड लेस ह्यूमिड एंड द यूएस मार्केट्स आर मिक्स्ड टुडे, नो चेंजेस इन द मॉर्गेज रेट्स। इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ न्यू होम इन नियर फ्यूचर, देयर इज फाइनली सम गुड न्यूज़ फॉर बायर्स। मॉर्गेज रेट्स आर फॉलिंग अराउंड द कंट्री। The market is finally correcting a bit. The Federal Reserve has been raising interest rates to curb inflation. This makes it more expensive to purchase a home. There are fewer buyers on the market than before, so more sellers have to lower their prices to meet the demand. Friends, buying a dream home, advice is free, pre-approval is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, 30-year fixed mortgage rate, 6%. 20-year fixed mortgage rate, 5.875%. 15-year fixed mortgage rate, 5.5%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it's lionmtg.com. Well, friends, remember, Lion Mortgage, we are independent full-service mortgage brokers, specializing in only home loans with a reputation for integrity, honesty, and consistency. We have strong relationship with wholesale lenders, so we can guarantee you the best rates and service. We go above and beyond to get you the best loan possible. We have helped first-time home buyers as well as investors acquire the perfect funding solutions. So friends, for all your mortgage needs, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home or refinancing, Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
20: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Mirchi Yoga Class. Mirchi Yoga Class.
2: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
3: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
7: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.
8: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
9: Chamakte Sitare 2026.
8: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
10: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
11: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
10: Renew?
11: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
10: What better way to celebrate than with something timeless?
11: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
13: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
14: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
13: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain. Par Bachchan, ek hi hota hai.
15: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
13: Moral of the story? Number one, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
17: दोस्तों, प्यार का ना सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है? पागलपन। और वो भी वो वाला पागलपन जिसका कोई इलाज नहीं होता। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज बात उस गाने की हो रही है जो याद दिलाता है कि प्यार में ना थोड़ा पागल होना अलाउड है। सैयारा का गाना तुम हो तो, क्योंकि इस गाने को सुनते वक्त लगता है कि जैसे दुनिया का सारा लॉजिक एक तरफ और दिल एक तरफ। और इसे गाया और कंपोज किया गया है विशाल मिश्रा ने, जिनके गाने की ना एक खास बात होती है कि वो प्यार को परफेक्ट नहीं दिखाते, वो उसका पागलपन दिखा देते हैं। किसी का मैसेज बार बार पढ़ना, बिना वजह स्माइल करना, हर गाने में एक ही चेहरा दिखाना, यार ये सब वही स्वीट मैडनेस है जो इस मेलेडी में महसूस होती है जब भी हम ये गाना सुनते हैं। और विशाल मिश्रा की सॉफ्ट वोकल्स और कंपोजिशन गाने की फीलिंग को इतना गहरा कर देती है ना कि लिसनर खुद अपनी कहानी सोचने लगता है। और शायद इसीलिए उनके रोमांटिक सॉन्ग्स इतने ज्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें प्यार कम और उसका पागलपन ज्यादा सुनाई देता है। तो चलिए आज कन्फेशन करते हैं, प्यार में आपने सबसे पागल चीज क्या की थी? लॉन्ग ड्राइव, लेट नाइट कॉल्स, या फिर किसी का लास्ट सीन चुप चुप के देखना? टेल मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और सुनते हैं विशाल मिश्रा ने गाया हुआ पागलपन वाला ये गाना, तुम हो तो, फ्रॉम सयारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
7: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

दोस्तों, क्या कभी किसी गाने ने आपको आपकी ही कहानी याद दिलाई है? वो पहला प्यार, वो रात भर चलने वाली बातें, वो एक नाम जो आज भी किसी गाने के साथ याद आ ही जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बात हो रही है एक ऐसे कंपोजर की जिनका हर गाना हमें अपनी कहानी जैसा लगता है। अ वॉइस दैट गेव अस कैसे हुआ, पहले भी मैं तुम हो, तो जिन गानों को ना हमने सिर्फ सुना नहीं है बल्कि महसूस किया है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आ रहा है विशाल मिश्रा पागलपन टूर, ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC। और नाम ही सब कुछ कह देता है, पागलपन यानी वही पागलपन जो प्यार में होता है, वही पागलपन जो किसी याद को गाने के साथ जोड़ देता है, और वही पागलपन जो अटलांटिक सिटी में हजारों लोगों को एक साथ एक ही सुर में लाने वाला है। तो डेट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं 26 जून शुक्रवार की शाम को हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना अटलांटिक सिटी में। और आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiusa.com। और हमेशा की तरह मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बताना है कि विशाल मिश्रा का कंपोज गाना कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, कौन से मूवी का है। DM me on Insta @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर आप मुझे WhatsApp कर सकते हो @9033647244 टू विन फ्री कॉन्सर्ट टिकट्स। एंड रिमेंबर माई फ्रेंड्स, इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC प्रेजेंटेशन, सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर इवनिंग विद विशाल मिश्रा पागलपन टूर। एक शाम जहां गाने सिर्फ परफॉर्म नहीं होंगे, वो आपको आपकी खुद की कहानी याद दिलाएंगे। तो जल्दी से अपने टिकट बुक कर लीजिए, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की टाइम।
1: यार बॉलीवुड की एक अच्छी बात यह है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पे फोकस कर रहे हैं और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La virtua la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्र फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या यार ये?
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: थोड़ी ना
3: आपने नहीं बताया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराई,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर, काम का टाइम है, आप फालतू हैं।
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
9: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णो केटरर्स, अमेरिका में सबसे बेहतरीन इंडोर और आउटडोर केटरिंग सेवा, सगाई शादी बेबी शावर जन्मदिन पार्टियां और एडल्ट डे केयर, आपके स्थान पर लाइव कुकिंग की सुविधा, हम अमेरिका में ताजा फरसान और मिठाइयां बनाते हैं, हम न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में सोमवार से शनिवार तक डिलीवरी के साथ टिफिन सेवा भी प्रदान करते हैं। आज ही बॉम्बे एक्सप्रेस और वैष्णो केटरर्स को कॉल करें 7329866241 और विजिट 2849 वुडब्रिज एवेन्यू एडिसन न्यू जर्सी।
10: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
11: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
10: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
12: अभी न जाओ छोड़ कर।
11: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
13: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
14: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
13: Renew?
14: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
13: What better way to celebrate than with something timeless?
14: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
15: Tera kya hoga, Kalia?
16: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

मूवी हो या मूड स्विंग, दीप पॉपकॉर्न के बैग में ना हर सीन का सोल्यूशन मिल ही जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न, यानी हेल्थी और ट्रेजिकली डिलीशियस कॉम्बो, या फिर दीप मसाला पॉपकॉर्न जो हर बाइट में इंटरवल वाला ड्रामा दे। यार फ्लेवर्स इतने जिंदा कि आप खाओगे और कहोगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टेस्ट अभी भी करारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देयर इज नो ग्रीस, नो गिल्ट, ओनली पॉप एंड मस्ती। तो आज ही मूवी टाइम के साथ ट्राई करना दीप पॉपकॉर्न, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आहा, बच्चा आज का आसन है यस बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
8: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
12: पहले भी मैं तुमसे मिला।
13: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
14: विशाल मिश्रा
15: Chetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
17: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है फिल्म अग्निपथ के चिकनी चमेली गाने से। यार वैसे तो इस गाने में स्क्रीन पे कटरीना कैफ का रॉ रस्टिक और हाई एनर्जी डांस तो है ही, लेकिन पर्दे के पीछे गणेश आचार्य जी जो कि इस गाने के कोरियोग्राफर है, उन्होंने बताया था कि कटरीना ने इस गाने के लिए लगातार 8 दिन रिहर्सल किए थे और कभी कभी 8 to 9 hours एट अ स्ट्रेच। तो सोचिए दोस्तों, ये कोई स्मूथ बॉलरूम नंबर नहीं था। फास्ट बीट्स, इंटेंस एक्सप्रेशन, देसी फुटवर्क और फुल स्टेमिना का टेस्ट था। और स्क्रीन पे कैटरीना एकदम फायर तो लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे बॉडी को लिटरली कमांड देना पड़ रहा था कि बस थोड़ा और, एक टेक और। और जी हाँ, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, करण जौहर, सभी लोग उनकी परफॉर्मेंस देख के काफ़ी इंप्रेस हुए थे। और ना ही सिर्फ वो, पूरी ऑडियंस काफ़ी इंप्रेस हुई थी, क्योंकि कभी कभी ना बॉलीवुड में एक हिट हुक स्टेप के पीछे पूरा बूट कैंप छुपा होता है और यही गाना वो साबित करता है। वैसे ये वो गाना था जिसमें यार कैटरीना और ऋतिक थे, और पहली बार ऐसा था कि ऋतिक नहीं नाच रहे थे और कैटरीना नाच रही थी और हम सब कैटरीना को देख रहे थे। तो जी हाँ, ये थी पर्दे के पीछे की वो मजेदार दास्ता फॉर द सॉन्ग चिकनी चमेली, और वही सुनते हैं अभी। लेकिन आप भी मुझे बताना कि ऐसा कौन सा हिट गाना है जिसके पर्दे के पीछे की बातें आपको भी जाननी है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए यह अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीति चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम। हर प्यार की एक किस्मत होती है दोस्तों, कुछ मिल जाते हैं और कुछ गाने बन जाते हैं। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और तुम मेरे ना हुए ना सही। ये वो गाना है जो सुनकर ना सिर्फ दिल भर ही नहीं आता, झूम भी उठ जाता है। मतलब थामा का ये जो नया ट्रैक है, रश्मिका मदाना की थ्रू एक आग भी है और एक आंसू भी। सचिन जिगर का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के जो लिरिक्स है, मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि मान लो यार प्यार और पेन एक साथ बैठ चुके हो चाय के कप के साथ। मजे की बात तो ये है कि शूटिंग के दौरान रश्मिका ने सिर्फ वन टेक में ये डांस किया था और पूरे के पूरे क्रू ने क्लैप करके उनकी तारीफ की थी, क्योंकि वो सीन प्योर हार्ट ब्रेक का रियल मोमेंट बन गया था। वैसे अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा, टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और अगर नहीं सुना है तो चलिए बजाते हैं आपके लिए, राइट, यू ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La birba la burga. Mirci, burga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
2: लेंस कोई लगाया नहीं
3: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब? नहीं,
3: कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
2: हैं। सर क्या बात, चुनके बनाया है?
3: कोई फोटो चुनके नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
2: कहाँ होता है बताइए।
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Inefficient,
9: very complex,
10: clumsy or
11: confusion ही confusion.
6: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
13: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
14: Chamakte Sitare 2026.
13: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
15: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
16: पहले भी मैं
17: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा। विशाल
15: मिश्रा, अमित जेटली ऑफ साई USA इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ, विशाल मिश्रा'स पागलपन टूर, फ्राइडे जून 26th, हार्ड रॉक लाइव, ETS अरेना, अटलांटिक सिटी। बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com.
18: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
19: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
4: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

दोस्तों, कभी कभी लाइफ के छोटे मोमेंट्स ही ना सबसे फिल्मी होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जैसे कि कार में बैठते ही अचानक से तुमसे ही बच जाए, या फिर ड्राइव के वक्त यूं ही चला चल रहा ही लग जाए, बस वो मोमेंट ही काफी होता है पूरा मूड चेंज करने के लिए। क्योंकि यार बॉलीवुड हमें यही तो सिखाता है, हर दिन में एक छोटा सा सीन ऐसा जरूर होता है, बस उसे नोटिस करना पड़ता है। तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, आपके दिन का ऐसा कौन सा मोमेंट था जो थोड़ा सा फिल्मी था? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल मेरे दिल के फिल्मी मोमेंट के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com. अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें. मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप. Shall we renew our vows?
9: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
8: Renew?
9: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
8: What better way to celebrate than with something timeless?
9: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
11: Chamakte Sitare 2026.
10: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है.
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shardar, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों, क्या कभी किसी गाने ने आपको आपकी ही कहानी याद दिलाई है? वो पहला प्यार, वो रात भर चलने वाली बातें, वो एक नाम जो आज भी किसी गाने के साथ याद आ ही जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है एक ऐसे कंपोजर की जिनका हर गाना हमें अपनी कहानी जैसा लगता है। अ वॉइस दैट गेव अस कैसे हुआ, पहले भी मैं तुम हो तो, जिन गानों को ना हमने सिर्फ सुना नहीं है बल्कि महसूस किया है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आ रहा है विशाल मिश्रा पागलपन टूर, ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC। और नाम ही सब कुछ कह देता है, पागलपन यानी वही पागलपन जो प्यार में होता है, वही पागलपन जो किसी याद को गाने के साथ जोड़ देता है, और वही पागलपन जो अटलांटिक सिटी में हजारों लोगों को एक साथ एक ही सुर में लाने वाला है। तो डेट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं 26 जून शुक्रवार की शाम को हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना अटलांटिक सिटी में। और आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiusa.com। और हमेशा की तरह मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बताना है कि विशाल मिश्रा का कंपोज गाना कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, कौन से मूवी का है। DM me on Insta RJ Mirchi Siddhi SIDDHI, या फिर आप मुझे WhatsApp कर सकते हो at 9033647244 to win free concert tickets. And remember my friends, it's an Amit Jaitley of Sai USA INC presentation. So it's definitely going to be a blockbuster evening with Vishal Mishra Pagal Pantur. एक शाम जहां गाने सिर्फ परफॉर्म नहीं होंगे, वो आपको आपकी खुद की कहानी याद दिलाएंगे। तो जल्दी से अपने टिकट बुक कर लीजिए और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और देखते ही देखते ये शाम भी ढलने आ चुकी है और हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ शाम शानदार में अलग अलग धमाकेदार गाने बजाने का जो मज़ा है, उसे मैं मिस नहीं करने वाली। इसलिए कल फिर से आपसे मिलने आऊँगी फ्रॉम 4 to 8 PM EST। और आज के लिए आप कहीं ना जाइए, क्योंकि यार प्यार के जो अनोखे फंडे हैं वो आपको समझाने आ रही है रोशी। तो कहीं ना जाइए, जमे रहिए, बने रहिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड करते रहिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @RJMirchiSiddhi SIDDHI ओनली ऑन इंस्टा। और आपके लिए ये अगला तड़कता फड़कता गाना जाते जाते राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।